FM की 101.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, सक्संबत 1948, भाद्र माह की तिथि 15, तदनुसार 7 सितंबर ईस्वी सन 2026। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले होंगे। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज

0: कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured are being provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including their immediate dismissal. Prime Minister Narendra Modi has said

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो में प्रातः के 6:20 और 30 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी ये अगला कार्यक्रम, भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनते हैं हरिओम शरण की गाई ये सुंदर सा भक्ति गीत।

अरब कार्यक्रम समर्पण का ये आखिरी भजन हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण और साथियों के स्वर में।

हरिओम शरण और साथियों की गए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद सुबह के 6:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत में सतीश कुमार शर्मा की गाई चंद गीत। सुबह 7 सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक आप सुनेंगे सुबह के 8:40 पर। आज आप सुनेंगे उरांव लोकगीत नारायण महतो और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम विविधा हम प्रसारित करेंगे सुबह 9:00। इस कार्यक्रम में यातायात की सुरक्षा पर चर्चा होगी, साथ ही आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, इस पर एक वार्ता प्रसारित की जाएगी। साथ ही आप इस कार्यक्रम में कुछ गीतों का आनंद भी आप लेंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 10:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी कार्यक्रम विवरण के साथ शाम के 5:02 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुनेंगे एक ही गायक शाम के 5:05 पर। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, दलहनी खेती पर विशेष जानकारी पर चर्चा होगी, साथ ही बागवानी में नए पौधों की देखभाल और सुरक्षा पर जानकारी देंगे हीरालाल सरदार, इनसे बातें करेंगे कमलेंदु महतो। शाम 6:00 मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा हम प्रसारित करेंगे 6:30 पर। समय के साथ आधुनिकता में बदलाव, इस विषय पर चर्चा होगी और इसी कार्यक्रम में सुनेंगे चंद हो लोकगीत। शाम 6:30 पर सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से शाम 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। शाम 7:15 पर हम प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि के 8:00। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के तहत आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। रात्रि के 10:00 गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः समाचार सुनेंगे रात्रि के 11:00 और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर।

और अब सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सतीश कुमार शर्मा के स्वर में चंद गीत।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से सुगम संगीत में सतीश कुमार शर्मा के स्वर में गाए चंद गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा।

धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, मैंने छुटपुन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ, इन पंक्तियों के साथ आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार चाईबासा में स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। कार्यक्रम जोहार चाईबासा में सबसे पहले हम आपको

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, मनोहर, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। इंदिवर के बोल हैं, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम।

और अब सुनते हैं आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह और साथियों के स्वर में फिल्म परवरिश का ये खूबसूरत सा गीत मजरू के बोल, संगीतिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

और अब सुनते हैं फिल्म गीत का ये खूबसूरत सा गीत, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गोरा और काला, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीतिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कैफी आजमी की रचना है, संगीत दिया है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: फासले। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शहरयार की रचना थी, संगीत दिया था शिव हरि ने। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अनोखी अदा।
1: पूछो सनम आपका।

0: और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है आराधना, गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है ST बर्मन ने।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: कदमों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चावासा में। अब सुनते हैं फिल्म बलमा का गीत, समीर की रचना, नदीम श्रवण के संगीत है, आवाजें हैं कुमार सानू और आशा भोसले की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम जुहार चायबासा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पे। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस

0: का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
7: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और

0: के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
2: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
7: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
6: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swami Narayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
7: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े।

0: कि ऊपर वाला शक्ति दे हमको, हमारी सरकार को, उनकी जमीन को हम लोग किसी तरीके से चौक दिल्ली लेके आ पाए। और जिस तरीके से इनका लगाव जुड़ाव क्षेत्र में रहा है वो आप सबको पता है। जीवन चक्र में कब क्या किसके साथ हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है।
1: दिवंगत मंत्री सुधीर कुमार के निधन पर भाजपा के प्रवक्ता प्रद्युम्न शाहदेव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्रों के दौरान उन्होंने देखा कि सुधीर कुमार शांत और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे। उन्होंने उनके आकस्मिक निधन को राज्य के लिए एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति बताया।
2: पूरे झारखंड के लिए सुधीर कुमार सरू जी डिफैक्टो नंबर टू थे कैबिनेट के, चार प्रमुख विभागों के मंत्री थे जिसमें अर्बन डेवलपमेंट था, टूरिज्म था और हायर एजुकेशन था। बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उनके कंधों पे और वो बौद्धिक मंत्री हम लोग उनको हमेशा कहते थे क्योंकि उनसे जब मुलाकात होती थी तो अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद बहुत सार्थक चर्चा हुई थी।
1: इससे पहले राज्य के दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार का कल गिरिडीह के हरसिंह राय डीह घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र श्रेयस ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में आयोजित गृह मंत्रालय की बैठक में साल 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों का रूट मैप जारी किया है। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को काफी मजबूत किया है।
0: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरे ने कोर्ट को सूचित किया है कि सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले तदाशा मिश्रा को डीजीपी नियुक्त करना सर्वोच्च अदालत के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले पर राज्य सरकार के नए नियमों और एमिकस क्यूरे की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में वीकेंड पर पूरा पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने साफ किया है कि शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन 50% छूट का नियम हर हाल में लागू होगा। नगर आयुक्त ने सभी वाहन पड़ावों की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि मनमानी करने वाले ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके टेंडर भी रद्द किए जा सकते हैं।
3: शाखा से भी निर्देश किया जा चुका है कि जहाँ भी लगता है रैंडम जांच करें उस एजेंसी पर ही दंडात्मक कार्रवाई डायरेक्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। हमारा आग्रह है कि कृपया जैसे भी हो इसके वीडियो फोटो वगैरह आप लोग व्हाट्सएप करिए जिससे कि कार्रवाई करने के समय फिर हमें जितना कम से कम समय लगे और डायरेक्टली उस पर कार्रवाई किया जाए।
1: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में गड़बड़ी मामले में CID ने पलामू से एक और आरोपी कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। JPSC और JSSC से जुड़े मामलों में जांच तेज करते हुए CID अब तक कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि 200 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सरायकेला, खरसावां और दुमका जिलों में चेकडैमों में डूबने से बड़ा हादसा हुआ है। सरायकेला के असंगी चेक डैम में नहाने उतरे 2 युवक तेज बहाव में लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है। वहीं दुमका के धोबई नदी चेक डैम में रेल बनाने के चक्कर में 2 अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी कर किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह। मौसम विभाग ने राज्य में 7 से 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में आज कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 9 सितंबर को लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग

जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जापान के नगोया शहर में होने वाले 20वें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में झारखंड की सरिता कुमारी का चयन हुआ है। वह इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मंत्री सुदीव्य कुमार के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, सुदीव्य रहा सफल, अलविदा सोनू। दैनिक जागरण के अनुसार, पत्नी की बात मान लेते तो शायद बच जाते सुदीव्य। प्रभात खबर के शब्द हैं, आंखें नहीं हैं पर शेखर और धीरज ने नापी हिमालय की ऊंचाइयां। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, शादीशुदा बेटी को भी अनुकंपा पर नौकरी का हक। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 5 मंजिला पीजी इमारत ढहने और हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में गंगा की सहायक नदियों में बाढ़ की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री सुदीव्य कुमार के निधन पर आज राज्य के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साझा किए भावुक संदेश। झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। शीर्ष अदालत राज्य सरकार के नए नियमों और नियमों के उल्लंघन पर करेगी विचार। रांची में वीकेंड और छुट्टियों पर पूरा पार्किंग शुल्क वसूलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। मौसम विभाग ने राज्य में आज से 12 सितंबर तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। और जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम की घोषणा। झारखंड की सरिता कुमारी का हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन।

0: बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। और अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत नारायण भगत और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में उरांव लोकगीत नारायण महतो और साथियों के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे नारायण महतो और साथियों के स्वर में उरांव लोकगीत। इसी के साथ हमारा लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के साथ है आज बसंती बिरुआ।

सभी श्रोताओं को बसंती का जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। उम्मीद है श्रोताओं इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए हमें एक अच्छा वातावरण भी चाहिए और साफ हवा भी चाहिए। इसके लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना होगा ताकि हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। श्रोताओं, इसलिए हर साल 7 सितंबर को साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देना है और

यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है, जिसका उद्देश्य सभी असरों पर जन जागरूकता बढ़ाना है, ताकि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का उद्देश्य स्वच्छ वायु के महत्व को उजागर करना और वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाना है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। यह हृदय रोग, श्वसन समस्याओं और समय से पहले मृत्यु का कारण भी बनता है। नीला आकाश स्वच्छ और स्वस्थ वायु का प्रतीक है, जिसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रदूषण कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वच्छ वायु न केवल हमारे

0: मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कयामत से कयामत तक की फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये वार्ता। वार्ता के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डालें, और इस विषय पर बातें कर रही हैं अनीता जी।

सभी श्रोताओं को मेरा जोहार। मेरा नाम अनिता गागरई है और आज आप सभी से बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं या उनमें अच्छी आदतें कैसे डालें, इस विषय पर कुछ बातों को बताने जा रहे हैं, जिसे जानना हम सभी अभिभावकों के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो करके अच्छा काम करे, होशियार बने और अच्छा नाम कमाए। इसके लिए हर माता पिता कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, और इस दौरान हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चा बचपन में जो देखता है उसे ही देखकर अच्छी या बुरी आदतों को सीखता है। और माता पिता जो सिखाते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं, इसलिए माता पिता को छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों में बचपन से ही कुछ अच्छी आदतों को डालेंगे तो आगे चलकर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के सफल भविष्य के लिए बच्चों में अच्छी आदतें होना बहुत ही ज़रूरी है। उनमें गुड मैनर्स होना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से ही बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। वो बिना चीखे चिल्ला करके विनम्रता से अपनी बातों को रख सके। कहाँ पर किस तरह से बात करनी चाहिए, गुड मैनर्स और बैड मैनर्स क्या होता है, इसके बारे में उन्हें अच्छे से समझ होनी चाहिए। अपने बड़ी बहन या बड़े भाई और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और बड़ों को पलटकर जवाब ना दें, और समय से सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अगर बच्चे समय से सोते हैं और समय पर उठते हैं तो उनका दिमाग दिन भर एक्टिव रहता है, और जिससे बच्चे का दिमाग क्रिएटिव होता है। उन्हें मेहनत करना सिखाएं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार से रखते हैं, जिससे आगे चलकर बच्चा छोटी छोटी समस्याओं का भी सामना नहीं कर पाता है, इसलिए उन्हें

बचपन से यही समझा है, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाएं। इसके लिए आप खुद एक प्रेरणा स्रोत बने और बच्चों में किताबें पढ़ने की आदतें भी डालें, क्योंकि बड़ों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डालने के लिए उनके सामने खुद किताब पढ़ने की आदत डालें। आपको देखकर बच्चे में भी किताब पढ़ने की आदत विकसित होगी। बच्चों में अपना काम खुद करने की आदत डालना चाहिए। इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। इससे बच्चे का विकास एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में होता है। बच्चा अपना काम खुद पूरी जिम्मेदारी से करेगा तो आपको भी मदद मिल जाएगी, और इसके साथ ही बच्चों को समय का महत्व भी बताएं। समय के महत्व के बारे बताना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें सिखाए कि समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग अच्छे कामों में करने या कोई क्रिएटिव चीज़ सीखने में लगाना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारा जीवन बेहतर हो सके। और बच्चों को गलती स्वीकार करने की भी आदत डालिए, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे बहुत ही ज़िद्दी होते हैं और वे अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें शर्म आती है अपनी गलती स्वीकार करने में, या अपना अपमान समझते हैं, जो आगे चलकर उनके करियर में बाधक हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सॉरी बोलने और गलती स्वीकार की करने की आदत को डाला जाना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ही अधिक जिद्दी होते हैं, कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचते, सभी काम अपने मन से करते हैं, जिसका कभी कभी गंभीर परिणाम हो सकता है, क्योंकि बच्चों में अधिक समझ नहीं होती है। इसके लिए बचपन से ही उनमें परमिशन लेने की आदत डालें, साथ ही शेयर करने की भी आदत डालें। अपने बच्चों से, आपने बहुत से बच्चों को ऐसा करते हुए देखा होगा जिनकी कुछ चीज़ों को छूने भर से ही वह बहुत रोने लगते हैं, यह एक बहुत ही बुरी आदत है। इसलिए उन्हें चीज़ों को शेयर करने के लिए भी उन्हें सिखाना चाहिए। बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए घर का वातावरण में खुशनुमा माहौल रखें, और ध्यान रखें कि बच्चे आपसे अपनी बातों को कह सकें, उन्हें मौका दें कहने का। अगर बच्चा कुछ कहने के लिए आपके पास आए तो उन्हें झिड़क के ना कहें, उसे प्यार से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए और ये क्या बात करना चाहते हैं। स्पष्ट नियम और दिनचर्या तय करें। उनके पढ़ने, खेलने या टीवी देखने का समय को तय करें, इससे उनमें अनुशासन आता है। समय पर नहाना, समय पर खाना खाना जरूर सिखाएं, और अच्छे कामों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, तारीफ करें या छोटा छोटा कोई इनाम दे दें, जिससे उन्हें खुशी के साथ साथ प्रेरणा मिलती है। और कभी कभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, उनकी जिज्ञासा को समझें, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने की कोशिश करें। इससे बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए उन्हें बढ़ावा दें, जैसे योग, खेल कूद, डांस आदि। इन तरीकों से बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार और अच्छे इंसान बनते हैं। इसके लिए हम माता पिता को एक
अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, ताकि बच्चे भविष्य बच्चे का भविष्य जो है सुंदर, उज्जवल और बेहतर हो सके। तो श्रोताओं, इन सब बातों को इतना ही कहकर आज मैं अनीता गागरही आपसे इजाज़त लेती हूँ। जोहार।

श्रोताओं, अभी आप वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डालें, और इस विषय पर अनीता जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सच ही है श्रोताओं, यदि हम बच्चों में अच्छी आदतें डालना चाहें तो इसके लिए हमें घर में वैसा माहौल वातावरण तैयार करना होगा जिससे बच्चे अच्छी चीज़ों को सीख सकें, और उन्हें समय समय पर हमें अच्छी बातें भी बतानी चाहिए ताकि वे अच्छी आदतों को सीख सकें, अच्छा व्यवहार सीख सकें। तो चलिए श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक और गीत से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जीवन एक संघर्ष है, इसका ये शीर्षक गीत मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, जावेद अख्तर की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिंग पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल के स्वर में फिल्म जहर का ये गीत, शहीद कादरी के रचना है, राजेश रोशन का संगीत है।

वक्त की आवाज़ इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। इंदीवर की रचना थी, संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम का ये अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जावेद अख्तर की रचना है, शिव हरी के संगीत, फिल्म का नाम है सिलसिला, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: सिलसिला। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। जावेद अख्तर की रचना थी, संगीत दिया था शिव हरि ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओ, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की, तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब

0: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
1: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
0: बालक बालिका हो सकते हैं।
1: हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
0: जी,
1: वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
0: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
1: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
0: जी,
1: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
0: जी,
1: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
0: जी।
1: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
0: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
1: हाँ,
0: आप ये कहना चाहते
1: जी,
0: हैं
1: जरूर।
0: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए NCERT की क्या भूमिका है?
1: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
0: जी।
1: और इसी के चलते NCERT भी इसके सालगिरह को मना रहा है
0: जी,
1: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
0: जी,
1: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
0: जी,
1: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
0: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
1: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
0: या तो वंचित वर्ग भी कह
1: वंचित
0: सकते हैं,
1: लोग
0: जी,
1: जो हैं
0: जी।
1: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि SC ST OBC और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी

0: सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
1: सबको
0: शामिल करती है
1: जी।
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांग जनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है, हमारी जो लड़कियां हैं या ड्रॉप आउट रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: किनमें, लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
1: जी।
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सकें, इन पर काम कर सकें, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से, मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित वातावरण,
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
0: बच्चियों का
1: जी,
0: लड़कियों का
1: हाँ।
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
1: जी,
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें।
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
0: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी
0: उपलब्ध हों,
1: आप ये कहना चाहती हैं?
0: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी,
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC ST
1: आदिवासी लोग, जनजातीय लोग
0: है ना, तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा है कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है।
0: जी
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है।
1: जी।
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके।
1: जी।
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है।
1: जी।
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं।
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
0: जी।
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग?
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज।
1: जी।
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया।
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें।
1: जी।
0: जो जेंडर का अर्थ था
1: बिल्कुल
0: वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना,
1: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता
0: जेंडर
1: है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें की दो हमारे फ्रेमवर्क है, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता की जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना।
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके।
1: रूढ़िवादिता जैसे, कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं।
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना।
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े

0: ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें। जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि, है ना?
0: जी जी जी। तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है। जी,
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है। तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में, अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है।
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड
0: है। एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी।
0: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी।
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
1: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो, कि एक साथ बैठ सकते हैं।
0: जी
1: जी।
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना बनाने के लिए
0: लड़कियों को करें या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए
1: जी।
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी।
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ
1: जी हाँ।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हम

0: जो अपनी कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं, जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते हैं,
0: न्यूट्रल शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: जी हाँ।
0: जी, कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है।
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे
1: छवि
0: में,
1: है।
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता।
1: जी
0: उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं। जी
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहाँ पर भी आप इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया, वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। अब हम आपको शामिल कर रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में।
5: हमारा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची।

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जुहार रांची में। और आज आपके साथ मैं हूँ आभा और मेरे साथ है
1: विनीता। स्वीकार करें हमारा जुहार नमस्कार।
0: दोस्तों, कितनी बार हम कोई फैसला इसलिए टाल देते हैं क्योंकि मन में पहला सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे दूसरों की राय हमारे फैसलों से बड़ी हो जाती है और हम अपनी पसंद, अपनी खुशी और अपनी सहजता को पीछे रखकर एक ऐसी स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। और हर व्यक्ति आपको अपनी दृष्टि से देखेगा, हर किसी को खुश करना हमेशा संभव नहीं है और ना ही जरूरी होता है।
1: बिल्कुल सही, इसलिए हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अपने मन की सुने और दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा शांति तो जाएगा ही, है ना।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और जब लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे की जगह मेरे लिए क्या सही है और क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है हो जाता है, तब हमारे भीतर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि लोगों की राय से मुक्त होना मन की सबसे सुंदर स्वतंत्रताओं में से एक है, यानी कि अब किसी की बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आपको जो अच्छा लगे, जैसा लगे करें, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमें खुद को खुश रखना है ना।
0: हाँ, बिल्कुल।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। आप हैं आभा और विनीता के साथ।
4: बिल्कुल।
3: तो अब आभा, मौसम की कुछ बातें कर लेते हैं ना, सबसे जरूरी।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: क्योंकि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, हमें सचेत रहने की तो जरूरत है और थोड़ी सी बात हमें मौसम विभाग की सुननी पड़ेगी।
4: हाँ, तो आपको बता दें, झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और चमक होने का अनुमान जताया है। 8-9 सितंबर को कुछ स्थानों यानी कि विशेषकर पलामू प्रमंडल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है।
3: और राजधानी में यानी कि रांची में अगले 3-4 दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ, हमें सावधानी बरतनी है। कहीं भी निकले तो छाता जरूर लेकर निकले, बारिश में भीगने से बचे, क्योंकि अभी जिस तरह से बीमारियों का प्रकोप फैल रहा है उसे देखकर हमें सचेत रहने की जरूरत है। डेंगू, स्वाइन फ्लू इस कदर
4: इस, हाँ, इस मौसम में ये सब चीजें ज्यादा फैलती हैं।
3: तो साफ सफाई का ख्याल रखें और खाने पीने का भी ख्याल रखें, ताकि इस मौसम में भी हम हंसते मुस्कुराते रहें, है ना।
4: हाँ,

0: आभा, अब कुछ बातें आज के दिन की कर लेते, यानी कि आज के इतिहास की,
1: हाँ,
0: 7 सितंबर
1: क्योंकि
0: की, है
1: हाँ
0: ना?
1: क्योंकि हर दिन अपने आप में खास होता है।
0: बिल्कुल
1: तो इतिहास के पन्ने अगर पलटे हैं तो हम जानेंगे कि 7 सितंबर 1812 में आज ही के दिन बेरोडिनो के युद्ध में नेपोलियन ने रूसी सेना को पराजित किया, और 1906 में आज ही के दिन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1921 की बात करें तो आज ही के दिन अमेरिका के न्यू जर्सी में पहली मिस अमेरिका सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
0: और आज की बात कर रहे हैं तो बताएं आपको कि 1927 में फिलो टेलर ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने में सफलता हासिल की। और 1822 में आज ही के दिन ब्राजील को पुर्तगाल से आजादी मिली थी।
1: और बात करें 1923 की तो आज ही के दिन वियना में इंटरपोल की स्थापना हुई। वर्ष 1931 में आज ही के दिन लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ था, और 1998 में आज ही के दिन अंतर संसदीय यूनियन यानी कि आईपीयू को 100वां सम्मेलन मॉस्को में प्रारंभ किया गया था।
0: और आज ही के दिन 2004 में फिजी के विजय सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 गोल्फर बने। और 2005 में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी। और 2009 में सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने गैर योजना खर्च में 10% की कटौती के आदेश दिए थे।

0: और अब उनकी बातें करते हैं जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा है ना, यानी कि
1: बिल्कुल
0: जिनका जन्मदिन है।
1: हाँ, तो बात कर रहे हैं जन्म दिवस की, तो आपको बता दें सन 1826 में आज ही के दिन राज नारायण बोस का अवतरण हुआ, जो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे।
0: और आज ही के दिन 1889 में शरद चंद्र बोस जन्मे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1917 में बानो जहांगीर कोयाजी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक और परिवार नियोजन के विशेषज्ञ थे, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: और पी भानुमति, जो भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायिका, निर्माता, उपन्यासकार और गीतकार थी, इन्होंने इस दुनिया में कदम रखा था 7 सितंबर 1925 को। अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका नीरज भनोट का जन्म भी हुआ था 1963 में।
0: प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बी आर इशारा का जन्म हुआ 1934 में। और 1887 में गोपीनाथ कविराज का जन्म हुआ, जो संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक थे। 1950 में भावना सोमाया का जन्म हुआ, जो भारतीय लेखक, फिल्म इतिहासकार और पत्रकार हैं।
1: और इसी वर्ष जन्म हुआ अनिल चौधरी का, जो प्रसिद्ध लेखक, नाट्य निर्माता तथा निर्देशक हैं। बात करें 1952 की, तो आज ही के दिन आलोक मेहता जन्मे, जो प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक हैं। और आज ही के दिन मलयालम फिल्म अभिनेता ममूटी का जन्म हुआ वर्ष 1948 में।
0: और 1941 में सुरेंद्र वर्मा का जन्म हुआ, जो हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में से एक है। और सम्मानित नेता इला रमेश भट्ट का जन्म भी आज ही के दिन 1933 में हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता, महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों के सम्मानित नेता हैं।
1: और 1934 में जन्म हुआ सुनील गंगोपाध्याय का, जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे।

0: बातें हो रही है आज के दिन की, है ना। तो
1: हम्म,
0: अब आज श्रोताओं को बताएं कि आज कुछ खास दिवस भी मनाया जाता है ना।
1: हाँ बिल्कुल। तो बता दें आपको, भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य स्वस्थ खान पान और सही पोषण के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
0: और इस वीक को मनाने का महत्व तो ये भी है कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण जरूरी है। ये शारीरिक विकास, मानसिक क्षमता, देश के आर्थिक विकास में मदद करता है, और इसे पहली बार 1982 में मनाया गया था। इसका संचालन मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
1: और शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जा देने और बीमारियों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छा पोषण शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों से आसानी से लड़ पाता है।
0: बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्व शरीर को दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही संतुलित आहार हमारे मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाता है, याददाश्त बढ़ाता है और तनाव के जोखिम को कम करता है। तो जरूरी है कि हम अपने डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज को जरूर शामिल करें, और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात कि पानी ज्यादा पिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर बीमारी का इलाज यही है कि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप इन सब बातों को अपनाएं और योग करें, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें, है ना। बस
1: बिल्कुल,
0: इस वीक को मनाने का यही उद्देश्य भी है।

0: हम बात कर रहे हैं आज के दिवस की, है ना? तो आज है स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है,
1: यानी कि आज के दिन, है ना? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में प्रस्ताव पास करके इस दिन की शुरुआत की थी। ये दिवस पहली बार 2020 में आज ही के दिन मनाया गया था।
0: साथ ही इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सामुदायिक और सरकारी स्तर पर यह समझाना है कि स्वच्छ हवा हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है।
1: इसका एक और उद्देश्य है वायु प्रदूषण से मुकाबला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम माना जाता है, और जिसे कम करने के लिए कड़े कदम उठाना इस दिन का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही सरकार, वैज्ञानिकों और आम जनता को मिलकर वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित करना भी आज के दिन का उद्देश्य है।

0: तो दिवस की बात कर रहे हैं तो आज एक और दिवस है ना?
1: कि आज खास दिनों की भरमार है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, 7 सितंबर अपने आप में कुछ खास है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, यानी कि पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। और ये दिन वैश्विक सुरक्षा, शांति और न्याय को बढ़ावा देने में पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सीमाओं से परे सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 2022 को इसे मनाने का बताया गया है और इसे इसी माध्यम से स्थापित किया गया है, और पहली बार 2023 में इसे मनाया गया, यानी कि डिसीजन लिया गया 2022 में और मनाना शुरू किया गया 2023 में।
0: बिल्कुल,
1: इसका उद्देश्य संगठित अपराध, आतंकवाद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अवैध गतिविधियों को निपटाने के लिए खुफिया जानकारी, संसाधनों और विशेषताओं को आपस में साझा करने के लिए पुलिस बलों को प्रोत्साहित करना है।
0: और साथ ही यह दिन वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र पुलिस और इंटरपोल जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है।

0: तो अब हमने बहुत सारी बातें की आज के दिन की, है ना। तो अब कुछ बातें और भी करते हैं, है ना।
1: हाँ
0: और जैसा कि तुमने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा
1: हाँ
0: कि खुद को खुश रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है ना, क्योंकि खुद को खुश रखेंगे तभी तो हम खुशियां बांटेंगे लोगों में। अगर हम खुद ही दुखी रहेंगे और मुस्कुराते हुए नहीं रहेंगे तो फिर लोगों को क्या ही देंगे, है ना।
1: और दिल की सेहत के लिए हमारा खुश रहना जरूरी है, लेकिन अकेले नहीं, सबके साथ, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहा, क्योंकि अकेले आप खुश रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबके साथ जो खुशी मिलती है वो तो अलग ही होती है
1: और
0: ना।
1: उसका असर भी हमारे ऊपर दिखता है ना।
0: बिल्कुल, तो इसके लिए क्या करना है हमें कि हमें अच्छे रिश्तों को सहेजना
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल। और
0: तो
1: इसके लिए मतलब कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको
0: हाँ,
1: करनी
0: करनी
1: होंगी।
0: पड़ेगी। और अच्छे रिश्तों को सहेजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें मानसिक सुकून देता है, यानी कि मेंटल पीस देता है, जो जिसका असर हमारी सेहत पर पड़ता
1: पड़ता
0: है।
1: है। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि दिन में कम से कम एक वक्त आप साथ बैठकर अपनों के साथ खाना खाएं और बातचीत करें, और दिन में कुछ अच्छी या मजेदार बातों को अपने साथ साझा करें, और थोड़ा समय साथ बिताएं, साथ टहलें, चाय पिए, खेलें, या कुछ मिलकर कुछ सीखने का या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश
0: यानी
1: करें।
0: कि मतलब इस भागदौड़ भरी लाइफ में कुछ पल खुशियों की तलाश है हम, है ना। लोगों को, घर में लोगों को एक दूसरे से बांधे, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है सिर्फ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं,
1: बिल्कुल।
0: पास में जो है उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप देखोगे घंटों सोशल मीडिया पे आप समय बिता रहे हैं, लेकिन पास में जो है उनके बारे में आपको ख्याल भी नहीं है।

0: तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनों के संग खुशियां बांटें, है ना।
1: और आजकल एक चीज है कि बुजुर्गों में अकेलापन जो है ये काफी बड़ी समस्या
0: काफी बढ़ रहा है,
1: और बढ़ती उम्र के साथ शरीर का तनाव प्रतिक्रिया तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है और कार्टिसोल काबू रखने की क्षमता कम होने लगती है।
0: और अगर हम थोड़ा सा समय बुजुर्गों के साथ बिताएंगे, दिन भर में अगर थोड़ी देर ही सही उनके पास बैठेंगे, सिर्फ अपनी नहीं उनकी सुनेंगे कि उन्होंने दिन भर क्या किया क्या खाया, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, है ना।
1: हाँ।
0: और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपका मेंटल पीस तो बढ़ेगा ही, साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी आप दूर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप अगर खुश है ना तो आपका शरीर एक्टिव रहता है, है ना।
0: तो इसलिए खुशियां बांटे दिल की सेहत के लिए, खुद के लिए, लेकिन हाँ सबसे जरूरी बात एक और कहूंगी कि ज्यादा उम्मीदें ना रखे दूसरों से,
1: हाँ,
0: है ना।
1: हाँ।
0: कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया हमारे साथ वैसा किया, खुद ही खुश रहे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही कहा ना आपा कि अपने खुश रहने की चाबी दूसरे को ना दे,
1: हाँ,
0: है ना। जो भी खुशी मिलती है उन जिन कामों में मिलती है वो करे, है ना।
1: बिल्कुल।

0: तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और अब इस कार्यक्रम से जाने का वक्त भी हो रहा है ना? तो
1: हाँ
0: चलते चलते कुछ कहना है आभा?
1: बिल्कुल, जैसे कि अभी आप कह रही थी कि ताला चाबी से भी खुलता है, और मतलब अपनी खुशियों को दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, तो आपको बता दें कि हथौड़े से भी खुलता है और ताला चाबी से भी खुलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, चाबी से खोला गया ताला बार बार इस्तेमाल किया जाता है और हथौड़े की चोट से खुला ताला हमेशा के लिए टूट जाता है।
0: वाह क्या बात है। ठीक, ऐसे ही रिश्ते भी होते हैं।
1: बिल्कुल
0: प्रेम की चाबी से खोला गया रिश्ता संभल जाता है, लेकिन क्रोध की चोट से टूट गया रिश्ता शायद ठीक
1: फिर
0: हो जाए, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता है।
1: इसीलिए रिश्तों के ताले पर गुस्से का हथौड़ा नहीं बल्कि प्रेम की चाबी आजमाइए। इसी के साथ जोहार रांची कार्यक्रम से आभा और
0: और विनीता
1: को
0: कुछ
1: दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुहार रांची, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में, और मैं हूं आपकी दोस्त आभा। तो हो जाइए तैयार अपने पसंद के गाने को सुनने के लिए। तो चलिए सबसे पहली फरमाइश के साथ शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज से। फिल्म है दिल तुझको दिया, गीत और संगीत राजेश रोशन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक और मीका वीरक।

दोस्तों, अब बारी है हमारे उन प्यारे श्रोताओं की जो हमें लगातार चिट्ठियां और संदेश भेजते हैं। ये हैं बड़ा बॉम्बे सुपा ईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, जलित प्रधान और देवेन, गुलाबदास राजादास हैं लेवई से, दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, और इनकी फरमाइश को पूरा करते हुए ये सुनना चाहते हैं फिल्म दामिनी का ये गाना, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर, संगीत नदीम शैफी का।

दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और कहानियों से ही तो यह आपकी पसंद खास बनती है। हमारे अगले श्रोता है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, और इनकी फरमाइश है फिल्म अंदाज अपना अपना का गाना सुनने का। आवाजें आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम की, रचना है तुषार भाटिया की।

हमारे अगले श्रोता हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही और इमरान राजा। ये लिखते हैं आप अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें। तो चलिए इनको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में बोल समीर के, संगीत दिलीप सेन का और फिल्म है इतिहास।

अगला गाना है अनुराधा पौडवाल, माफ कीजिएगा, अगला गाना है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो का गाया हुआ, फिल्म है क्या यही प्यार है। जलीस शेरवानी के शब्दों को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और इस गाने की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, ऋतु सिंह और ऋषभ सिंह।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये समय होता है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे नागपुरी भाषा में।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया सब श्रोता बहिन मन के वन्ना बटले जोहार और रानी बहिन और कुहो जोहार। कहो कैसन हाल समाचार है?
1: जोहार वन्ना बहिन और कार्यक्रम सुनवैया सब बहिन मन के रानी बटले जोहार। हमर हाल समाचार तो एकदम बेसे बेस है। रावरे कहो आपन हाल समाचार कर विषय में।
0: हमो एकदम नगदे नगद ही और आसरा करीला कि हमरे का सब सुनवैया बहिन मन भी कुशल मंगल से हो बहे और स्वस्थ हो बहे।
1: एकदम स्वस्थ हो बहे और स्वस्थ रहे जरूरी भी तो है। काले की कहल जायला नहीं कि घर कर जे रौनक होवेला उ महिला कर घर कर महिला से ही होवेला और उ रौनक के बनाए के राखे के लिए ई बहुत जरूरी है कि महिला खुद भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहे।
0: एकदम सही कहली रानी बहन। लेकिन जानी ला का होवेला बिहान से रात तक काम कर करते करते करते करते जिम्मेदारी ई सब भागदौड़ कर चलते कै धाव थकान और कमजोरी महिला मन के महसूस होवेला। इकर चलते चक्कर आवे तनी कौन काम कर ले हमरे मन के जे थकावट लागेला चाहे सीढ़ी चढ़े के बेरा हमरे कर सांस फूल जाएला ई सब समस्या कर परेशानी महिला मन के कै धाव होवेला जेके हमरे मन नजरअंदाज कर देवेला और ई बात एकदम ठीक नखे।
1: हाँ एकदम सही कहली एकदम ठीक नखे। लेकिन महिला मन के दिनचर्या कुछ ऐसा होवेला वन्ना बहिन की घर परिवार कर जिम्मेदारी कर बीच उमने अपन स्वास्थ्य के ही पीछे छोड़ देवेना और रौरे जे कहली थकान कमजोरी चक्कर इस सब कर बारे तो ऐसा होले हमरे मन का सोचिला कि काम ज्यादा रहे चाहे नींद पूरा नहीं भेलक से ले ऐसा लग बुझाते। लेकिन ऐसा बार बार होवे तो इके नजरअंदाज नखे करे ई ठीक नखे।
0: एकदम सही कहली। और कभी कभार थकान होवे तो अलग बात है लेकिन हर बार थकान और कमजोरी कर चलते खाली बगरा काम नहीं होवेला जानी ला हमरे कर शरीर कह धाव इस सब संकेत से हमरे के सावधान करेला तो ईसन के रोजमर्रा कर परेशानी के समझ के टाले हमरे मन के नखे।
1: हाँ और अपन स्वास्थ्य कर ध्यान भी रखे चाहिए ई हमरे कर सबसे बड़ जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य कर ध्यान रखे कर शुरुआत होवेला सही जानकारी से और महिला मन के होए वाला थकान कमजोरी और चक्कर आवेग कर एगो बड़ कारण है एनीमिया यानी खून कर कमी। आज हमरे कर देश में बहुत महिला एनीमिया कर बीमारी से पीड़ित है इके का मिले वे ठीक नखे।
0: से ले चलो आज हमरे मन जानकारी करब एनीमिया कर बारे में कि एनीमिया का होवेला और का ले होवेला। तो जब शरीर में हीमोग्लोबिन कर मात्रा सामान्य रूप से कम होवे लागेला तखन वो एनीमिया या खून कर कमी कहलाला।
1: हाँ और जानी रवन्ना बहन ये हीमोग्लोबिन है नहीं से हमरे के कर शरीर कर अलग अलग हिस्सा में ऑक्सीजन पहुंचाई कर काम करेला। से ले जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम होवेला तो व्यक्ति के कमजोरी और थकान महसूस होवे लागेला है नहीं?
0: हाँ सही कह ली। और सांस फूले दिल कर धड़कन बढ़े जैसन जो लक्षण मन है से एनीमिया कर होवेला और ई सब लक्षण के नजरअंदाज हमरे मन के नहीं करे चाहिए खासकर महिला मन के।
1: हाँ काले की महिला मन के एनीमिया होए कर खतरा ज्यादा होवेला। महिलाओं में मासिक धर्म कर दौरान अधिक रक्तस्राव गर्भावस्था में पोषण कर अधिक जरूरत और भोजन में आयरन कर कमी इस सब कारण बनेला एनीमिया कर। सेले इके नजरअंदाज करे कर जगह चिकित्सकीय सलाह लेवे चाहिए।
0: एकदम सही कहली रानी बहिन। और खासकर किशोरी गर्भवती महिला और जे महिला मन के अत्यधिक रक्त स्राव होवेला उमन के अपन स्वास्थ्य कर अतिरिक्त सावधानी रखे के चाहिए खान पान कर भी विशेष ध्यान रखे के चाहिए और अपने के बचाव भी करे के चाहिए। और जानी ला हमरे कर रसोई में ऐसा कै गो चीज होवेला जे की आयरन कर जरूरत के पूरा करेला जैसे कि हरा पत्तेदार सब्जी पालक मेथी बथुआ साग सरसों साग दाल गुड़ चना राजमा तिल चुकंदर सूखा मेवा सोयाबीन पनीर और इस सब के हमरे मन अपन भोजन में शामिल कर सकीला। और जानी ला बहन
1: हाँ हाँ।
0: सबसे बढ़िया चीज है आयरन कर कमी जे होवेला तो हमरे मन लोहा कर कढ़ाई में अगर तियन मन के बनाई
1: है
0: तो उकर से भी हमरे का शरीर में जे आयरन कर कमी है से दूर होवेला।
1: हाँ और इकर साथ साथ है अंकुरित अनाज जैसे अंकुरित चना मूंग अंजीर खजूर मूंगफली इस सब कर साथ है मोट अनाज जैसे बाजरा रागी यानी मड़ुआ इस सब भी बहुत फायदेमंद होवेला और खाना में सलाद भी जरूर लेवे के चाहिए और मौसमी फल भी।
0: और इस सब कर संगे विटामिन सी भी हमरे लिए बहुत जरूरी होवेला। देखो नी विटामिन सी जो है से खाद्य पदार्थ में होवेला से भोजन से हमरे मन के मिले वाला आयरन कर अवशोषण में मदद करेला तो इकर ले नींबू आंवला फल में संतरा इस सब के हमरे मन के अपन खाना में जरूर शामिल करे के चाहिए और चाहू तो सलाद या दाल में हमरे मन के नींबू के मिलाए के जरूर लेवे के चाहिए ये वो बहुत बड़
1: बढ़िया आदत। हाँ हाँ ये तो बढ़िया आदत है वन्ना बहन लेकिन खाना खाई कर तुरंत पहले या बादे चाय या कॉफी पिए कर जे आदत होवेला नहीं इकर से भी बचे के चाहिए काले की चाय और कॉफी में कुछ तत्व ऐसा होवेला जे आयरन कर अवशोषण के कम कर देवेला से ले इकर भी ध्यान

0: खान पान और डॉक्टर का सलाह से ले बहुत जरूरी है।
1: एकदम सही कह ली वंदना बहन। सही जानकारी, सही भोजन, समय पर जांच और उचित उपचार एनीमिया से बचाव और नियंत्रण कर दिशा में इस समझदारी भरा कदम है और हमरे के इस सब कर भी ध्यान रखे जरूरी है। यही तरह की जब रावरे स्वस्थ रहब खुश रहब तबे पूरा परिवार कर ध्यान जो है बढ़िया से रख सकीला है। नहीं
0: सही कहली, कहली की महिला परिवार कर धूरी हो गए।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो रानी बहन हमारे मन खाली गुठियाते रह की कोनो गीत मन भी सुनवा।
1: नहीं नहीं एकदम गीत सुनने को ही की।
0: तो चलो सुनीला नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मनकर गावल।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये रहे विज्ञापन संदेश, और उकर से पहले हमरे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मन करगावल। तो रानी बहन, जैसे कि हमरे मन जानीला कि झारखंड राज्य, जैसे कि सबके पता है, वन पर्वत नदी नाला से भरल ठाव हके, जहाँ आवेको जाए के लिए आदमी के डर लागत रहे। दुर्गम डहर और जंगली जीव जंतु से भरल जल जंगल कर बीच में बसल इस झारखंड में कवि मन कैसे बसलें और कहाँ से शिक्षा दीक्षा प्रेरणा पालें और वो विकट बेरा में अपन रचना करके जन जन के मोह ले लें, कहना कठिन है। तो चलो आज हमरे मन नागपुरी साहित्य में जानब नागपुरी कर कुछ पूर्णा कवि मन कर विषय में।
6: और जब हमरे झारखंड कर पूर्णा क्षेत्रीय भाषा कर कवि कलाकार में हमरे मन के बहुत गांव मिले ला, जेकर में रघुनाथ निरपति, बरजूराम, हनुमान सिंह, जय कोविंद मिश्र, कंचन महंत, घासी हलधर राम, घासी राम, रामकृष्ण, अनूप राय आदि मनक नाव लेल जाए ला। इमन कर रचना हिंदी कर पूर्णा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कर स्तर कर है नी।
5: एकदम सही कहली बहन। तो चलू आज हमरे मन जानब नागपुरी साहित्य कर पूर्णा कवि रघुनाथ निरपति और हनुमान सिंह कर बारे में। तो चलो सबसे पहले जानब रघुनाथ निरपति कर जीवन कथा।
6: हाँ, नागपुरी काव्य जगत में नागवंशी महाराज रघुनाथ निरपति से पहले है, कुनमो कवि कर नाव और रचना कर पता नहीं चल है। रघुनाथ निरपति नागवंश कर 50वां महाराजा रहे। इनकर समय 1626 से 1668 रहे। 17वीं शताब्दी कर बेरा भक्ति काल कर रहे। सेले रघुनाथ निरपति कर रचना भक्ति भाव से भरल है। इनकर रचना में चैतन्य महाप्रभु कर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखल जायला। इनकर नागपुरी गीत मन में बंगला भाषा कर प्रभाव भी दिसेला है, निबन्ना बहन।
5: सही कहली। तो चलो हमरे मन जानब रघुनाथ निरपति कर पहला गीत।
6: हाँ, सब सुख गेली दूर है, नौ जवन विफल भेल, पिता बिनु तनु झूरे है, आजू नागर मन परे,
5: कोपे ते जखन करीछे मन, धरती कातर लोटीछे कान्हा, गर्वे ना हेरी तारे सही अपराध फलिलो सजनी।
6: पिया छोड़ी गेल भोरे रे, आजू नागर मन परे, आर कार चाय दिताम ठेस, उरे बाईसाबो ना साम बेस।
5: अभागिनी पापिनी रे, आइलो बिरनी साम सुहामनी, बैसाबो कोले करे रे, आजू नागर मन परे, सुनो सखी एक वचन सार, कुंजे की आसीवेन नागार, तेजल नटवरे है गावत रघुनाथ निरपति, साजल हलधरे है आजू नागर मन परे।
6: ऊपर कर पंक्ति में जे रावरे बोली, कवि रघुनाथ निरपति बंगला झुमैर में कृष्ण वियोग कर अभिव्यक्ति कर है। ये रचना में राधा कर पछतावा के देखाल जा है कि जीत कर चलते कैसे कृष्ण उनकर से दूर चल गए।
5: और ये पछताचाप कर भाव इन यर प्रकट करल जाए है कि जखन कृष्ण जी राधा कर नजदीक रहे तखन राधा के मनाई को कितना प्रयास करत रहे, लेकिन राधा अपन अभिमान के छोड़े नी पारलक और प्रतिफल में कृष्ण जी उनके छोड़ के मथुरा चल गए और राधा अपने के दोषा रहित करते रहलक और अपन कृष्ण जी के बार बार याद करते रहलक।
6: बिल्कुल।
5: तो चलो इकर बादे हमरे मन जानब कवि हनुमान सिंह कर जीवन गाथा, लेकिन उकर से पहले सुन लेवेला और एगो नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और संगीमन कर गावल।
6: एकदम चलो।

0: तो एखन हमरे मन सुनली नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और संगी मनकर गावल। तो रानी बहन सबसे पहले रौरे बताओ कि गीत कैसन लगल?
1: बहुत सुंदर गीत रहे, बहुत बेस बुझालक,
0: बेस लगल
1: बहुत।
0: और आशा करीला कि सुनवैया बहन मन के भी बढ़िया लाइक होगी ये गीत।
1: हाँ, हाँ।
0: तो चलो शुरू करीला हमरे कर जे कार्यक्रम चलत रहे कि नागपुर कर पूर्णा कवि मन में हनुमान सिंह कर जीवन गाथा कर विषय में।
1: हाँ, जब हमने नागपुरी कर पूर्णा कवि मन में रघुनाथ नृपति कर बादे हनुमान सिंह कर नाव आवेला। इनकर जन्म अनुमान कर मुताबिक 1735 ईस्वी में गांव चपका घाघरा गुमला में होए रहे।
0: दोसर नागपुरी कवि मन ज इनकर जन्म स्थान कर अलग अलग जानकारी है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी हनुमान सिंह कर जन्म स्थान घटा गांव सीसई गुमला मानेना और जन्म काल कर अनुमान उनकर रचना सीता स्वयंवर कर एगो फगुआ गीत से करेना, जेकर में कवि हनुमान सिंह फगुआ राग कर गीत के लिखे शुरू कर ले। इनकर समय 1847 से 1790 ठहरेला। राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको रोकस हनुमान दिन बुध सारंग होरी के रस। ऊपर कर जे पंक्ति एखन हम बोलली सेकर में बताल जाहे कि कवि हनुमान सिंह कर रचना करे कर शुरुआत कखन होलक। राग सात निगम चार बसु आठ शशि एक, इकर माने है कि 1847 संवत यानी कि 1790 ईस्वी कर दिना बुध पूर्णिमा कर बादे पहला दिन जे फगुआ राग में होली गीत कर रचना उकर ले। 1790 ईस्वी में सीता स्वयंवर कर रचना हनुमान सिंह जी कर रहे हैं।
1: हनुमान सिंह कर प्रमुख रचना मन है कोशिला बिया, मृगीसत, मैना खंड, परलय गीत, निर्लय गीत, जगन्नाथ खंड आदि। इनकर रचना में फगुआ राग कर विशेषता देखे मिलेला। फगुआ पुछारी राग एगो विशेष राग है जेकर में कव्वाली नियर होवेला, है नी?
0: और जानी ला बहिन, डॉक्टर सीताराम केसरी कर अनुसार हनुमान सिंह एगो प्रचंड कवि रहे। ऐसा मानल जाएला कि हनुमान सिंह और बरजू राम में एगो संगीत प्रतियोगिता भी हो रहे। इकर प्रथम पाली जे हो रहे उकर में बरजू राम जीत जाए रहे। कहल जाएला कि हनुमान सिंह अपन पूर्व रचित 1,00,000 गीत के गंगा में बहाय दे रहे।
1: और
0: उकर बादे बरजू राम कर संगे हनुमान सिंह दोबारा से प्रतियोगिता के कर ले और उकर में बरजू राम हनुमान सिंह से हार गए। तो ई रहे हनुमान सिंह कर प्रतिभा।
1: और कबीर कर उल्टल बांज कर नियर गीत भी फगुआ पुछारी में चलेला। हनुमान सिंह कर एगो गीत में देखल जा सकेला कि
0: निर्लय परलय जरी जाई हो आपर तन कब अवतारी। इकर छंद है, हाँ जी अमर लोक दीप नहीं अमर तन हुआ नहीं, साप दीप नवखंड परलय में जरी गई, धुंधकार जरी गई जब सो खंखा के संधा, विचारी कराबो अहंग सुहंग परलय में जाई हो।
1: कवि जन बुझी सब
0: राग है।
1: हाँ, कवि जन बुझी सब करू में विचारी हो अमर तन कब।
0: हाँ जी, छव शास्त्र नव व्याकरण 18 पुराण सुन धुंध महासुन साहेब परलय हो, जाय से खन कवि जन कहाँ रहू सो मोही माखी सुना बहु।
1: हाँ, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर कहे रहे कि पुछारी गीत फगवा कर एगो रहस्यमय गीत होवेला जेकर मुख्य विषय ब्रह्मा माया जगत चर अचर जड़ चेतन कर सृष्टि कर प्रश्न उत्तर अपेक्षित होवेला। उनके एगो निर्गुण कवि कर रूप में भी जानल जाएला, है नी?
0: तो चलो ई रहे कवि हनुमान सिंह कर जीवन कथा। तो आज हमरे मन चलो आप जानकारी कर लेवेला संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन कर बारे में।
1: कबना बहन, एगो कहावत है नी कि जैसन होई अन वैसन होई मन। भोजन खाली पेट नहीं भरे इस शरीर के ताकत भी देवेला। हमरे कर थाली कैसन है इकर असर हमरे कर सेहत और पूरा जीवन पर भी पड़ेला, है नी?
0: एकदम सही बात कह ली रानी। देखो नी, महिला मने जे घर कर हर सदस्य कर पसंद कर ध्यान रखे ना, छुआ मन के समय समय पर खाना देवे ना, गोटा परिवार के पौष्टिक भोजन देवे ना, इकर चिंता भी उमने करे ना। लेकिन कई धाम ऐसा होवेला कि भागदौड़ में हमरे मन अपन थाली के यानी कि अपन खाना के हमरे मन भूल जाए।
1: हाँ, और आदत के बदले भी जरूरी है। खाली की एगो महिला कर स्वस्थ रहे खाली उकर अपन जरूरत नखे गोटा परिवार ले जरूरी है। सेले गोटा परिवार कर साथे साथे अपन भोजन कर ध्यान रखे उतने जरूरी है।
0: और देखो नी, आज हमरे घर जे खाना है उसन होवे के चाहिए जेकर में अनाज दाल अन्य प्रोटीन खाद्य पदार्थ हरी साग सब्जी मौसमी फल दूध दही घी पनीर ये सब उचित मात्रा में शामिल होवे के चाहिए। यानी स्वाद कर संगे संगे संतुलन कर भी जरूरत।
1: हाँ, और एक जरूरी बात, संतुलित भोजन माने महंगा खाना नहीं होवेला। हमरे कर रसोई में मौजूद चना सत्तू दाल अनाज ये सब पोषण कर सरल और किफायती साधन होवेला।
0: एकदम सही कहली रानी बहन। और संतुलित भोजन से सीधा मतलब होवेला कि थाली में विविधता राखे के है, और भोजन ताजा गरम और पौष्टिक होवे के चाहिए, काले कि हमरे मन अक्सर स्वाद और सुविधा कर चक्कर में हरा तियन तरकारी दाल या फल के नजरअंदाज कर देवीला, और ये एकदम ठीक बात नखे।
1: हाँ एकदम सही कहली वंदना बहन। और महिला मने सबकर

0: खाई कर ध्यान तो रखे है ना, लेकिन अपन बेरा ध्यान नहीं देवे, यो ठीक न के बहुत ज्यादा तेल नमक और चीनी वाला खाना के सीमित करे भी जरूरी है। काली की स्वाद तो जरूरी है, लेकिन स्वाद ले सेहत के दाव में लगाए समझदारी रखे।
1: एकदम सही कहली। और भोजन कर संगे संगे पर्याप्त और साफ पानी, साफ सफाई, नियमित दिनचर्या भी स्वस्थ जीवन ले बहुत जरूरी है। से ले इकर भी हमारे मन के ध्यान रखे के चाहिए। और स्वस्थ जीवन कर शुरुआत कोई बड़ बदलाव न के हमारे मन के रसोई और थाली में शुरुआत दिनचर्या से शुरुआत हुए ला। और स्वस्थ जीवन जिए ले कोनो एक दिन कर कोशिश नहीं हुए ला, बल्कि रोज कर कोशिश है, छोट जो की छोट छोट चीज से हुए ला।
0: हाँ, छोट छोट बढ़िया आदत से बनेला, ये सब आगे चल के बढ़िया सेहत कर नींव रखेला। सेले जब भी अपन थाली के सजाओ तो एक बार जरूर सोचो कि खाना से खाली पेट नखे भरे, उकर से शरीर के जरूरी पोषण भी मिले चाहिए। काले की संतुलित भोजन शरीर के ताकत देवेला, स्वस्थ रखेला, और स्वस्थ शरीर हमरे के जीवन के बेहतर ढंग से जिए कर शक्ति देवेला। का कहिला वन्ना बहन?
1: एकदम सही कहली रानी बहन।
0: और अब का विचार है?
1: अब विचार ये है कि चलो बेरा बचले है।
0: हाँ।
1: तो हमरे मन और एगो सुंदर सा गीत सुन लेविला, यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।
0: ठीक।

0: तो रानी बहिन एखन हमरे मन सुनली इ सुंदर नागपुरी लोकगीत। तो आप तो बेरा हो जा है, तो अगला कार्यक्रम में हमरे मन बहिन मन कर संगे फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा, जोहार
1: जोहार।

सुनने वाले सभी श्रोताओं को आवा का नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष फिल्म संगीत के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ सदाबहार नगमों का ऐसा गुलदस्ता जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, सिनेमा और संगीत का रिश्ता हमारी जिंदगी की तरह है, कभी खुशी कभी गम तो कभी हल्की सी शरारत। आज के इस सफर में हम गुजरेंगे सुनहरे दौर की उन गलियों से जहाँ की हर धुन अपने आप में एक दास्तां कहती है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं साल 1964 की फिल्म वो कौन थी के इस बेहद खूबसूरत और रूहानी नगमे के साथ। मदन मोहन का संगीत है, लता मंगेशकर की मखमली आवाज और राजा मेहंदी अली खान की रचना है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। इस गाने को सुनकर आज भी आंखें नम और दिल को सुकून मिल जाता है। मदन मोहन जी की धुनों में जो जादू था वो सीधे रूह को छूता है। खैर, मोहब्बत की इस संजीदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उस दौर की तरफ जब रेडियो पर युवाओं की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब की। जब वो पर्दे पर तिरछी टोपी पहनकर अपनी खास अदा से चलते थे तो हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। अगला गाना है साल 1965 की सुपरहिट फिल्म गाइड से। सचिन देव बर्मन का लाजवाब संगीत, किशोर कुमार की बेबाक आवाज और शैलेंद्र के लिखे बोल।

गाता रहे मेरा दिल। वाकई संगीत अगर साथ हो तो जिंदगी का सफर बेहद आसान हो जाता है। श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा और आपका रिश्ता भी तो बरसों पुराना है। चिट्ठियों के दौर से शुरू हुआ यह सफर आज डिजिटल युग में भी उतना ही ताजा है। चलिए अब वक्त हो चला है एक ऐसे गाने का जो प्यार की मासूमियत और वादों को बयां करता है। आरडी बर्मन यानी पंजाबदा का जादुई संगीत और गुलजार साहब की जादुई कलम, फिल्म आंधी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये सदाबहार तराना।

तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। इस गाने में गुलजार साहब के लिखे शब्दों की गहराई को सिर्फ महसूस किया जाता है। आइए कार्यक्रम में रुख करते हैं अगले गाने की तरफ और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में एक और गीत, रचना अनजान की, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और फिल्म है याराना।

सच में क्या इतने खूबसूरत गाने आज बन सकते हैं? तो अगर इसका जवाब है तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना, एकांत में बैठकर अपने आप को इन खूबसूरत गानों में इस तरह खो देना एक तरफ। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म चांदनी से। आवाजें बाबला मेहता और लता मंगेशकर की हैं, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत शिवहरी का।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब मुझे आपसे विदा लेना होगा। उम्मीद है आज के गानों का यह सफर आपके दिल को छू गया होगा। अगले हफ्ते यानी कि कल इसी वक्त इसी स्टेशन पर फिर होगी मुलाकात कुछ और नए पुराने फिल्मी तरानों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रांची।

आप सुन रहे थे हिंदी नगमे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited and Urdu Daily Newspaper and its director and TMC MP Naveemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered by Vidhan Nagar Police Commissionerate. The investigation agency said the case

0: and are making every possible effort to ensure that they do not face any difficulties. Action will be taken against the owner of the building. All dangerous buildings in the surrounding area will also be identified and demolished.
1: Manjinder Singh Sirsa said the National Disaster Response Force team is continuously engaged in the operation. Mr. Singh said the Chief Minister has directed the Commissioner and the Chief Secretary to immediately suspend all officials responsible for this matter and to take strict action. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bettel, in the national capital today. In a social media post, Ministry of External Affairs spokesperson Ranthir Jaiswal said the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Mr. Bettel arrived in New Delhi for an official visit earlier today. The Indian Space Research Organization, ISRO, has issued a clarification on reports circulating in the media regarding speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. The United States, South Korea and Japan today began a 5-day joint military exercise, Freedom Edge, in international waters east and south of South Korea's Jeju Island. The exercise is proceeding on schedule even as key Seoul, Washington drills were recently scaled back upon U.S. President Donald Trump's order. South Korea's Joint Chiefs of Staff said the annual defensive exercise will focus on strengthening the three countries' operational and joint response capabilities across maritime, air and cyber domains. The drills are aimed at countering North Korean nuclear and missile threats and maintaining regional stability. The fourth edition of Freedom Edge is being held as scheduled despite the recent scaling back of the U.S.-South Korea Ulchi Freedom Shield exercise following an order from U.S. President Donald Trump. Benchmark domestic equity indices were trading in negative zone during the afternoon session today. The Sensex declined 485 points to 76,030, while the Nifty fell 145 points to 23,753 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी सांसद पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, कोलकाता और दिल्ली स्थित ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी का सघन तलाशी अभियान जारी। बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक सफलता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूएन के 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के फैसले को बताया ऐतिहासिक। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। राज्य में एसआईआर अभियान तेज। नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए मिले 3.5 लाख से अधिक आवेदन। दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर। और जमशेदपुर में राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता संपन्न। कई जिलों के युवाओं ने दिखाया दम। विजेता खिलाड़ियों को मिले मेडल और सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद हसन नदीमुल हक से जुड़े कोलकाता, दिल्ली और रांची स्थित करीब 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई एक समाचार पत्र से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। ईडी की टीमों ने आज तड़के कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में स्थित सांसद के आवास और कार्यालय समेत अन्य ठिकानों पर दबिश दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को बाल प्रारंभिक और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की तारीख से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश

0: इस कुरीति को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची में आयोजित भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला में सहभागिता की। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार के आकस्मिक निधन के कारण झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर 8 से 10 सितंबर तक प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने बताया कि राजकीय शोक के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।
1: माननीय मंत्री झारखंड सरकार सुदीप सोनू जी हमारे बीच अब नहीं रहे, उनका असामयिक निधन हो गया हृदय गति रुकने से। बहुत ही दुखद बात है, झारखंड राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अभी आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया जाए और आगे जब कुछ सामान्य हो जाएगा इसके बाद हम लोग मिल बैठकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे।
0: सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में कल होने वाले राज्यपाल के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सीटीसी प्रिसीजन टूल्स का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। सरायकेला एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: संभावित गवर्नर आनंदी गवर्नर सर का जो विजिट है इसमें लेके हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या कहा पर हम लोग डिप्लॉय करना है सब हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है और उस टाइम पर हम लोग अच्छे से डिप्लॉय करेंगे। दूसरा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें सीमा और वगैरह जो भी हम लोग डिप्लॉय करना है उसके लिए हम लोग सारे डिवेक्शन दिए गए हैं।
0: राज्य में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत अब तक फॉर्म 6, 7 और 8 के लिए 5,90,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 3.5 लाख से अधिक फॉर्म 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार नाम जोड़ने और सुधार के लिए दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 तय की गई है। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के हड्डी रोग और एनाटॉमी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रिम्स बेसिक नी आर्थोप्लास्टी कोर्स का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला का उद्देश्य आर्थोपेडिक सर्जनों और युवा डॉक्टरों को घुटना प्रत्यारोपण की आधुनिक तकनीकों तथा प्री ऑपरेटिव प्लानिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित होगा। समारोह की अंतिम तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस समारोह का रिहर्सल आज XLRI में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने पूर्व में पंजीकरण से वंचित रही 33 छात्राओं को भी समारोह में शामिल होने का विशेष अवसर दिया है। सिमडेगा पुलिस ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। एसपी श्रीकांत एस खोत्रे ने चेतावनी दी है कि नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: पुलिस इस दिशा में एक्साइज विभाग के साथ में मिलकर लगातार छापेमारी कर रही। पिछले सप्ताह में ही लगभग 500 केजी जवा मोहमा तथा करीब 20 लीटर शराब जो है बरामद की गई है। इसे कांड भी जो है वो दर्ज किए गए। ड्रग्स की बात करें तो पिछले माह में ही 2 कांड दर्ज किए गए हैं जिसमें जो टैबलेट है वो बरामद की गई है और उस नेटवर्क में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI के 29वें एक्सपो उत्सव 2026 के आधिकारिक ब्रोशर का कल विमोचन किया गया। मौके पर JCI के PRO चेयरमैन वरुण जालान ने बताया कि इस 7 दिवसीय भव्य व्यापार मेले में देश विदेश के विभिन्न

0: उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक स्टॉल महिलाओं को भी समर्पित होगा।
1: विगत कुछ वर्षों से हम लोग पूरा पिंक कैनोपी लगाते हैं, जितनी भी लेडीज उद्यमी है रांची में उनके लिए, तो वो पिंक हैंगर जो हमारा होता है उसमें सिर्फ लेडीज लोग से रिलेटेड सारे सामान रहते हैं, बाकी पूरा एक्सपो में जितने भी 250 प्लस स्टॉल्स लगते हैं, बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट देखी गई, जहां प्रमुख इक्विटी इंडेक्स आधे प्रतिशत से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहे हैं। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक फिसलकर 76,073 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 138 अंकों की गिरावट के साथ 23,759 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में मौसम बदल गया है और बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही आज से 12 सितंबर तक राज्य में गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय झारखंड राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि टाटा स्टील खेल विभाग के प्रमुख कप्तान मनीष सिन्हा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हजारीबाग, बोकारो और रांची समेत कई जिलों के अंडर 11 से लेकर सीनियर वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी सांसद पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, कोलकाता और दिल्ली स्थित ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी का सघन तलाशी अभियान जारी। बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक सफलता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूएन के 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के फैसले को बताया ऐतिहासिक। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। राज्य में एसआईआर अभियान तेज। नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए मिले 3.5 लाख से अधिक आवेदन। दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर। और जमशेदपुर में राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता संपन्न। कई जिलों के युवाओं ने दिखाया दम। विजेता खिलाड़ियों को मिले मेडल और सम्मान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं गिरिजा देवी।

0: expected. Thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Tamil Nadu till tomorrow. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,355. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan, followed by Navalparasi East. In tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz have stormed into the quarterfinals of the US Open. In the women's singles round of 16 yesterday, Belarusian top seed Aryna Sabalenka defeated American Taylor Townsend 6-4, 6-3 at Arthur Ashe Stadium. Sabalenka will face Czech player Linda Noskova in the quarterfinals tomorrow. In another round of 16 clash, Spain's Carlos Alcaraz thrashed American Tommy Paul in the pre-quarterfinals at Arthur Ashe Stadium. Benchmark domestic equity indices extended losses during the afternoon session today. The Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Naveemul Haque's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की. कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है. दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई. एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित. प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की. बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान. और टेनिस में आयना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया. इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया.
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए. बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे. निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे. वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे. वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे. उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है. गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
3: Ours is a very trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
3: Ratification likely in the coming future.
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
6: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
7: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
8: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली ब्लीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, बुजिंग शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें क्या नाइन नाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने

0: उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यावहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालेंका

0: पिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी बॉल को पराजित किया। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रांची है। दिन के प्रसारण के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आभा। आप सभी को मेरा शुभ दोपहर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का पहला गाना है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और कैलाश खेर की। संगीत अनु मलिक का है और गीतकार है समीर।

कार्यक्रम में अब सुनिए 1997 की सुपरहिट देशभक्ति और रोमांटिक फिल्म बॉर्डर का मधुर गीत। इसे रूप कुमार राठौर ने अपनी शानदार आवाज दी है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती. लीजिए सुनिए फिल्म अनुरोध का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में. गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का.

इसी के साथ फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोकभवन में राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति ने मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। समिति के अध्यक्ष डॉ. एम. थंबीदुरई ने समिति की गतिविधियों से अवगत कराया। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में इन दिनों कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची पश्चिमी जिला के कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर श्री मरांडी ने सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की सेवा से परिपूर्ण प्रेरणादायी यात्रा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दुबे ने कहा कि सीआईडी जांच के नाम पर मामले की लीपापोती की जा रही है। सीबीआई की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वे झारखंड में गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लें।
1: जब तक उसकी जांच नहीं होगी ये सारी लीपापोती चल रही है और इसका एकमात्र अल्टरनेट ये है कि उसकी सीबीआई से जांच होगी। तो मुझे लगता है कि सभी को माफी मांगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है कि सीबीआई जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच जब होगी तो मुख्यमंत्री से लेकर राहुल गांधी जी तक फंसने वाले हैं।
0: ईडी ने झारखंड, दिल्ली और कोलकाता में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने यह दबिश दी है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। रांची के कोकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी जारी है। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति का चरण चल रहा है। हालांकि राजकीय शोक की वजह से आज सुनवाई का काम स्थगित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 15 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। श्री कुमार ने इस दौरान छूटे हुए पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटांड थाना क्षेत्र के भेलाटांड गांव के पास से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 मोबाइल और 5 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटे के दौरान गुमला और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। दियारा क्षेत्र में बाढ़ का असर पूरी तरह से दिखने लगा है, जिससे हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन आइंद ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से राहत शिविर में रहने की अपील की है।
1: जिला प्रशासन की ओर से वहाँ जितना बाढ़ पीड़ित गांव है सभी गांवों का दौरा किए
2: और अभी देखते हैं पानी का जल जो है दिनों दिन बढ़ रहा है, तो सभी ग्रामीणों से अनुरोध किए वे लोग साहिबगंज में जो हम लोग राहत शिविर बनाए वहाँ पे आकर रहे, वहाँ पे पशुओं के लिए व्यवस्था किया गया है रहने का। सभी से अनुरोध किया गया कि आप लोग वहाँ जो राहत शिविर है वहाँ पे आकर रहे।
0: भुवनेश्वर में आयोजित ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। रांची की मनीषा रानी तिर्की ने महिला एकल का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी को पराजित किया। राज्य के अन्य खिलाड़ियों ने भी उम्दा प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह के दौरान विजेता सम्मानित किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायासी नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को

0: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञा के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण भूमिकाओं उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते
2: हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है, जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
1: जी,
2: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
1: जी।
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
2: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
2: जी,
1: हैं
2: जरूर।
1: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?

0: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी, यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
1: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी।
0: जी,
1: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
0: या
1: लोग
0: तो वंचित वर्ग भी कह
1: वंचित
0: सकते हैं।
1: लोग जो
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं। कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
0: उन सबको
1: शामिल करती
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं या
0: ड्रॉपआउट
1: रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
0: किनमें, लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
1: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉपआउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
0: जी।
1: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
0: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से, मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
1: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
0: सुरक्षित वातावरण,
1: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
0: जी,
1: वो सबको मिले।
0: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
1: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉपआउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
0: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
1: बच्चियों
0: जी,
1: का
0: जी,
1: लड़कियों का
0: हाँ।
1: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
0: जी,
1: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें।
0: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
1: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
0: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी
1: उपलब्ध हों,
0: आप ये कहना चाहती हैं?
1: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम केजीबीवीज भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकें। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे केजीबीवीज हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
0: जी।
1: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ एक बहुत

0: जरूरी चीज है, जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम। ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी।
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC ST
1: आदिवासी लोग, जनजातीय लोग
0: है ना। तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
0: जी,
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है
1: जी।
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके
1: जी।
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो हाँ, उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: हाँ, तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है। लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे
0: जी।
1: तो अब आते हैं NCERT पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि NCERT के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज
1: जी।
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें। जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: है। जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह है उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं।

0: सकते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके।
1: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में
0: हाँ,
1: है ना?
0: जी
1: जी जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा
0: हाँ,
1: है जी।
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं, तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड,
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो है खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी।
0: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं

0: तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी,
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
1: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ बैठ सकते हैं।
0: जी
1: जी।
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना और बनाने के लिए
0: लड़कियों को करें या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए
1: जी।
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी।
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ
1: जी हाँ।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ। तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं।
1: हाँ, विद्यार्थियों कह सकते हैं।
0: न्यूट्रल शब्द भी।
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जी, कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं।
1: जी।
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहाँ लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है
1: जी।
0: तो बुद्धिमता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए
1: जी।
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर होस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है
0: जी। एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज होते हैं।
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सके लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहां पर भी आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी
1: जी।
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर

0: से आप सबको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 800-440-559 और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग मेलोडीज गाने। हम लेकर पुनः हाजिर होंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज में बस कुछ ही पलों में।

सुनने वाले सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। आकाशवाणी रांची से आप सभी संगीत प्रेमियों का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम रांची मेलोडीज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की भाग दौड़ के बाद शाम के इस खूबसूरत पहर में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ चुनिंदा सुरीले और सदाबहार नगमे जो आपके मूड को बना देंगे खुशनुमा। तो आइए इस प्यारी सी शाम की शुरुआत करते हैं बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ, और इस सदाबहार गीत को अपनी जादुई आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। फिल्म है सागर, गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत आरडी बर्मन का।

अगला गाना है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। बोल को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का।

अगली प्रस्तुति है फिल्म लव स्टोरी से, आवाजें अमित कुमार और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत आर डी बर्मन का।

अगला गाना फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, संगीत खयाम का है और गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

दोस्तों, रिमझिम फुहारों और सुरीले तरानों के बीच समय का पहिया कितनी तेजी से घूमता है पता ही नहीं चलता। सुरों का यह कारवा यूं ही चलता रहेगा और हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नए और कुछ पुराने और मन भावन तरानों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त आभा को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रांची, और इस गाने को एंजॉय कीजिए मुकेश की आवाज में। नमस्कार।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। ईडी ने झारखंड, दिल्ली और कोलकाता में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने यह दावेश दी है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। रांची के कोकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी जारी है। रांची में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची सदर अस्पताल के आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस पहले से तत्पर थी। इसी क्रम में सदर अस्पताल परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उसने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग पुलिस ने सेवानिवृत्त शिक्षक रामजय कुमार मेहता पर गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल, 8 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ आरोपी का पूर्व से आपसी विवाद चल रहा था। इसी विवाद में बदला लेने के लिए उसने शिक्षक पर फायरिंग की थी। लातेहार में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने सिगरेट से भरा करीब 920 ग्राम गांजा बरामद किया है। दिवंगत सुदिव्य कुमार के पुत्र श्रेयस ने आज पूरे विधि विधान के साथ बराकर नदी के तट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस मौके पर उनके परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें, जिसके अंतर्गत भेंट वार्ता होगी साइबर अपराध एक गंभीर समस्या पर, और इस विषय पर सिंधु मिश्रा की बात होगी पुलिस उपाधीक्षक साइबर एवं सीआईडी के श्री सुमित प्रसाद और तकनीकी विशेषज्ञ साइबर के श्री सौरभ कुमार से, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की।
1: कार्यक्रम आओ साथ चलें की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ अहम बातों की जानकारी आपको करवाएंगे। हर क्षेत्र में हम विकास तो कर रहे हैं, और यह भी सच है कि हम तकनीकी क्षेत्र में दिनों दिन तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, आज तकनीकी विकास के साथ साथ हम कई आधुनिक चीजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं,

0: जो हमारे लिए फायदेमंद भी है, और अगर इसकी पूरी जानकारी ना हो तो हम जाने अनजाने इससे ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में हमने आज बातें की साइबर क्राइम डीएसपी श्री सुमित प्रसाद से। विशेष तौर से इनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण भाई बहनों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि उनमें साइबर अपराध को लेकर कितनी जागरूकता है और इसके लिए ये कैसे सावधानियां रखें। तो आइए लेते हैं साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी साइबर क्राइम डीएसपी श्री सुमित प्रसाद से। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम।
0: सर, अभी भी बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन ऐसे हैं जो साइबर क्राइम क्या है इस विषय पर नहीं जानते, उनकी इतनी जागरूकता इसको लेकर नहीं है, तो आप सबसे पहले हमारे ऐसे भाई बहनों को बताएं कि आखिर ये साइबर क्राइम है क्या।
1: देखिए, साइबर क्राइम जो है वो किसी भी इंटरनेट के माध्यम से हुआ जो भी क्राइम है, क्राइम इन सेंस की किसी का फ्रॉड हो जाना, किसी को ठग लिया जाना या जो भी क्राइम है उसको अगर हम इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बताते हैं तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है।
0: ये फ्रॉड किस किस जरिए हो सकता है, इनके साथ कैसे ये सावधानियां रखेंगे।
1: साइबर फ्रॉड में सबसे पहला जो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोगों द्वारा जागरूक नहीं होने के कारण भी ये शिकायतों को मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखा गया है। जब भी कोई फोन करते हैं तो सबसे पहला आपका मतलब सोच ये होना चाहिए कि अगर बैंक से संबंधित किसी भी दस्तावेज के बारे में कोई पूछताछ करते हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। किसी भी तरह से उनको अपने गुप्त रूप से जो पिन आता है, जो पिन कोड होता है, ओटीपी जिसको बोलते हैं, कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। बैंक के पदाधिकारी कभी भी आपसे ओटीपी की मांग नहीं करते हैं। अगर वो ये बोलकर आपको फोन कर रहा है कि वो बैंक का पदाधिकारी बोल रहा है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। बिल्कुल अगर आपको जरा भी आपने उनसे कोई भी अपना डेटा शेयर किया तो आप तुरंत ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर इस तरह का फोन आता है तो तुरंत 100 डायल करके उसके बारे में बताना है कि इस तरह से हमें ठगने का प्रयास किया गया है, और उस पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तभी आप ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं।
0: और अब तो देखा जा रहा है सर कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में भी विकास देखा जा रहा है, लोगों के पास मोबाइल जैसे गैजेट भी हैं, तो इसके जरिए भी क्या साइबर क्राइम होता है।
1: बिल्कुल, अब तो आधार लिंक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को बैंक खातों से जोड़ दिया गया है। ये एक पहल है जो कि डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसारित है, और में भारत देश में डिजिटल इंडिया को बहुत ही उच्च तर्ज पर रखा जाता है कि भारत भी एक विकसित देश की तरह बने। तो इसमें मोबाइल से जो भी फ्रॉड आते हैं वो उसमें यही माना जाता है कि हम लोगों ने देखा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल पे कॉल जाता है, उसको किसी तरीके से रजिस्टर्ड मोबाइल वो प्राप्त कर लेते हैं या उनको बता दिया जाता है कि ये रजिस्टर्ड मोबाइल आपका इस बैंक से आधार है, आधार से लिंक है, आपको ये बैंक अकाउंट हम बंद कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके से उनको तंग करने की कोशिश करते हैं साइबर अपराधी। आपको जब भी किसी इस तरह के फोन आते हैं बिल्कुल आपको किसी से कोई डेटा शेयर नहीं करना है। डेटा शेयर नहीं करिएगा तो आपके साथ ठगी होने के कोई चांस नहीं है। आपने डेटा शेयर किया या ओटीपी आपने किसी को मैसेज किया, आप तुरंत ठगी के शिकार हो सकते हैं।
0: सर, अब ये बात आती है कि अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, विशेष तौर से हम यहाँ पर बातें करेंगे ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों के लिए, कि उनके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में शिकायत कहाँ जाकर करें।
1: देखिए, जब भी किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो वो सबसे पहला अपना जिस अकाउंट से साइबर फ्रॉड हुआ उनके साथ, उसे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि संबंधित बैंक को उसकी जानकारी तुरंत दें। डायल 100 पे फोन करके 100 डायल करके वो तुरंत उस बारे में पुलिस को बताए, और नियर का उनका जो भी पास का थाना है वहां जाकर उनको बताना है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है, और संबंधित दस्तावेज के साथ उसमें एक कंप्लेन दर्ज कराना है ताकि उनका जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान हो सके।
0: ये शिकायतें क्या हम साइबर क्राइम के लिए जो बना हुआ थाना है उसी पर जाकर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे गांव के निकटतम थाना क्षेत्र है उनमें भी जाकर ये शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, साइबर थाना जो रांची का है वो आपका 2 लाख के ऊपर का केस लेता है। अगर किसी का फ्रॉड 2 लाख के ऊपर का है तो निसंकोच वो साइबर थाना में आके इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन हमारे पास ये भी सुविधा है कि वो नियरेस्ट जो भी उनका निकटतम थाना है वहां जाकर वो सबसे पहले बताए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, उसके साथ जो भी फ्रॉड जितनी भी रकम राशि की फ्रॉड हुई है उसके बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और जब वो 2 लाख के ऊपर आता है तो वो साइबर थाना

0: करें और कैसे सुरक्षित रहे।
1: इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आप हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखें जो जानकारी उसकी अच्छे से रखता हो। अगर आपको जानकारी इस बात की नहीं है तो आप बिल्कुल किसी से सलाह मशवरा करके ही काम कर सकते हैं। हमेशा उन साइटों से बचे जो साइट फर्जी होते हैं, जो फिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो आपको उन साइटों को जानना होगा। आपको HTTPS देखना होगा जो सिक्योर्ड होते हैं, सरलिक लैंग्वेज होते हैं जो कि लोग उसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। लेकिन इसमें मतलब सिंपल सी बात यह है, एक लाइन में अगर बात बोली जाए कि अगर कोई भी क्रेडेंशियल्स अगर आप शेयर नहीं करते हैं, मैं बार बार उसी बात को रिपीट करता हूं कि अगर आप कोई भी अपनी गुप्त जानकारी जो बैंक से संबंधित हो, किसी रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित हो, उसको आप उजागर किसी को नहीं करते हैं, आप बच सकते हैं। आपके पास ऑथेंटिकेशन आता है, 2-way ऑथेंटिकेशन आता है, 3F ऑथेंटिकेशन आता है, तो आप उस ऑथेंटिकेशन में अपना फिंगरप्रिंट, अपना जो भी उसको लॉक लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल उसको सुरक्षित तरीके से रखिए, कभी किसी से शेयर मत करिए।
0: और कुछ देर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाइल गैजेट का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रामीण युवक युवतियां भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्हें सुरक्षित रहने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करें और कैसे सुरक्षा भी अपनाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: आज के समय में अगर देखा जाए तो हर लोग फेसबुक से जुड़ चुके हैं। फेसबुक पर जब भी आप जुड़ते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। ध्यान रखें कि व्हाट्सएप पे भी इस तरह का अगर कोई मैसेज आता है तो तुरंत उसे ब्लॉक कर दें और इसकी जानकारी तुरंत सामने 100 डायल करके बताएं कि इस नंबर से हमें जो भी कॉल आ रहा है, और कॉल आने के बाद या ऑब्सीन कुछ इमेजेस भेज रहा है, कुछ भी अगर ऐसा है, तो तुरंत जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो रही है, तुरंत इसकी शिकायत आप कराएं। फेसबुक पे अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से मतलब ध्यान रखें कि वो अगर आपके किसी और के फ्रेंड लिस्ट में भी है तो भी आप उससे एक बार वेरीफाई हो लें कि ये व्यक्ति वो वही है, या फिर ये आप इनको कैसे जानते हैं, एक बार वेरीफाई होने के बाद ही उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। व्हाट्सएप पे जब कॉल आता है और वो किसी अननोन नंबर से या फिर कोई इस तरह के नंबर से आता है, तो उसे उठाने से पहले 10 बार सोचें कि इसको उठाने के बाद ये आपसे कुछ भी कर सकता है या आपको तंग कर सकता है, उसे तुरंत ब्लॉक कर दें। इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप खुद की सावधानी से ही अपना बचाव कर सकते हैं।
0: साइबर थाना में अब तक क्या ग्रामीण क्षेत्रों से भी आपके पास शिकायतें आई हैं कि हमारे साथ साइबर क्राइम के तहत, या बैंक अकाउंट हो या फिर मोबाइल फोन हो, इन सब के जरिए कोई फ्रॉड हुआ हो?
1: जी देखिए, मैं साइबर थाना CID में हूँ, तो CID में 2 लाख के ऊपर के मामले आते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पास जब भी कोई तकनीकी सहायता के लिए आसपास के जो थाना क्षेत्रों से आते हैं, तो उसमें अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, क्योंकि वो अपना OTP शेयर कर चुके होते हैं, या फिर UPI का एक नया अभी कॉन्सेप्ट आ गया है। UPI में वो आपको एक नंबर बोलेगा कि इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपका UPI रजिस्ट्रेशन फेल होने वाला है। आप कभी भी किसी भी OTP को या किसी भी नंबर को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि वो फर्जीवाड़े तरीके से आपसे आपका OTP और UPI ले करके वो दूसरे आपके पैसों को अपने अकाउंट में अवैध रूप से हस्तांतरित कर लेता है। तो आप इस तरह के मामले जो है हमारे पास आए हैं, जिसमें अधिकतर ग्रामीण लोग मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं, चूंकि मैं CID साइबर थाना में हूँ, तो यहाँ पे उस तरह के मामले अभी तक तो नहीं आए हैं जो 2 लाख के ऊपर हो।
0: सर, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, जब आपने बात की कि CID साइबर थाना क्षेत्र में है आप कार्यरत, तो इसका क्या कार्यप्रणाली कुछ अलग है?
1: हाँ देखिए, इसका कार्यप्रणाली अलग नहीं है, बट शिकायत जो है, हम 2 लाख के ऊपर जो भी पैसों का हस्तांतरण हुआ है जो नेट के माध्यम से हो, उसका हम शिकायत डायरेक्ट रजिस्टर करते हैं और खुद सुपरवाइज करते हैं यहाँ पे। दूसरा, हमारा जो भी तकनीकी सहायता हम लोग प्रदान कराते हैं, उन थानों से जब एप्लीकेशन आता है कि कोई भी उनसे साइबर फ्रॉड हुआ है, तब हम उनको तकनीकी सहायता प्रदान कराते हैं। और विशिष्ट परिस्थिति के केसेस जो कि डिफाइंड है हमारे थाना के, तो उसमें हम लोग विशिष्ट तरह के केसेस को हम लोग सुपरवाइज करते हैं और उसमें तकनीकी सहायता ही प्रदान कराते हैं।
0: सर, लोगों में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता आए, उनमें ज्यादा से ज्यादा इन सब को लेकर अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हमारे ओर से इस तरह के जो भी साइबर से संबंधित जानकारियां हैं, वो हमारे तकनीकी पदाधिकारी और हमारे थाना क्षेत्र से लोग जाते हैं आसपास के स्कूलों में, बैंकों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस करवाते हैं। हम लोग अपना ड्राइव भी चलवाते हैं, जिसमें हमेशा जहां जहां वाईफाई कनेक्शन फ्री किया हुआ है, वहां जाके हम लोग ये इसको जागरूक करते हैं कि आप वाईफाई कनेक्शन फ्री ना करें, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। बैंक में अवेयरनेस

0: लोग करवाते हैं, अलग अलग जो भी नए नए तरीके के अपराध शैली होती है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ स्कूल में बच्चों को जागरूक करते हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ाते हैं। रेडियो के माध्यम से, जैसे आप हैं, आपके माध्यम से भी हम लोग इसको अवेयरनेस करते हैं, टेलीविजन के माध्यम से अवेयरनेस करते हैं, पेपर में हमारा संडे या मंडे को दैनिक जागरण और इस तरह के प्रभात खबर के अखबारों में हमारा डिस्क्रिप्शन छपता है कि किस तरह से सावधान रहें, और हम लोग इस तरह के पैम्पलेट भी बनवाते हैं जिसमें हम लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं।
1: सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो घरों में रहती हैं, इन लोगों को भी देखा जाता है कि एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल बखूबी कर रही हैं, और साथ ही साथ नेट वगैरह की भी सुविधा इनके मोबाइल में है, और साथ ही साथ लड़कियां, इन महिलाओं और बच्चियों के लिए आप खास तौर से सुरक्षित रहने के लिए और कैसे ये अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल करें, इंटरनेट में क्या सावधानियां बरतें, इन महिलाओं को और लड़कियों को क्या संदेश देंगे?
0: अधिकतर जो हमारे थाने में या फिर बाहर के थानों में जब हमें जानकारी प्राप्त होती है तो देखा गया है महिलाएं बेसिकली फेसबुक का शिकार हो जाती हैं। शिकार इन सेंस की वो हमेशा ये बताती हैं कि हमारा फेक प्रोफाइल बनाया जा चुका है, उसमें ऑब्सीन इमेजेस अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस तरह में मैं हमेशा एक ही बात सबको बताता हूँ कि फेसबुक का इस्तेमाल बहुत तरीके से करें, कभी भी पासवर्ड अपना फोन नंबर नहीं रखें ताकि उसे कोई भी आराम से फेसबुक में आपका जीमेल का आईडी डाल के या फिर मेल आईडी डालकर वो अपना नंबर को फोन नंबर डाल के वो खोल लेता हो। उसमें आप ध्यान रखें, कैफे, साइबर कैफे में जाके कभी भी अपना फेसबुक इस्तेमाल ना करें। जब भी आप इस तरह के शिकार के, मतलब मैं देखा हूं अधिकतर जो लोग इस तरह के फेसबुक में महिलाएं बेसिकली आती हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो हमेशा ये एक भी बात को बोलती है कि मैं कभी थाने नहीं गई हूं, या फिर मुझे इस तरह के मामलों में क्या शिकायत कैसे दर्ज करानी है वो मुझे नहीं पता है, या फिर मेरे परिवार में इसकी बदनामी होगी। तो इन सब के लिए मैं हमेशा ये बात बोलूंगा कि अगर आप जाके थानों में ये बात बोल दे कि हमारा पहचान गुप्त रखा जाए तो बिल्कुल वो गुप्त रखते हैं, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बेशक शिकायत कराएं, अपनी शिकायत को दर्ज कराएं ताकि उसमें कार्रवाई आगे हो सके, अन्यथा आप अगर दब के रहेंगे, आपकी गलती जिसमें नहीं है उसके लिए भी आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो आप बेशक इसकी शिकायत कराएं। व्हाट्सएप, फेसबुक में हमेशा मैं बोलता हूं कि व्हाट्सएप में जब भी आप किसी अननोन नंबर से आता है, नंबर आपको आता है, तुरंत उसे ब्लॉक करें, उसे जांचें, सामने अगर आपको लगता है कि वो किसी भी तरह से आपको परेशान कर सकता है, आप तुरंत उसमें 100 डायल करके उसको बताएं या फिर नियरेस्ट थाना को जाकर इसकी जानकारी दें। फेसबुक के थ्रू दोस्ती करने से पहले बिल्कुल सतर्क रहें। आप अगर फेसबुक के जरिए दोस्ती करते हैं, आप ठगी के शिकार भी हो सकते हैं, आपको बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है।
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम से जुड़े और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, और साइबर क्राइम से संबंधित कैसे सावधानी रखें और सुरक्षित रहें इस विषय पर हमें जानकारी दी। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। आज कार्यक्रम में हम आपको जानकारी करवा रहे हैं साइबर क्राइम के संबंध में। इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेने से पहले आइए सुनवाती हूँ आपको पहले ये गीत।
2: न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए लेते हैं कुछ और जानकारी साइबर अपराध से जुड़ी बातों के संबंध में। और अब कार्यक्रम में है साइबर क्राइम के तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ श्री सौरभ कुमार। आइए करते हैं इनसे बातचीत।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि लोग तकनीकी क्षेत्र में विकास तो कर रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं जो साइबर क्राइम के तहत आती हैं, वो समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं इन गैजेट्स के इस्तेमाल पर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये साइबर क्राइम है क्या?
2: साइबर क्राइम कोई भी एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स को हथियार की तरह या टारगेट की तरह, टूल या टारगेट की तरह प्रयोग किया जाता है।
1: अच्छा।
2: वैसा कोई भी क्राइम जिसमें हम कंप्यूटर को एज अ टूल या एज अ टारगेट प्रयोग करें, उसको साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो बेसिकली हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि साइबर क्राइम के कितने तरीके के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं, क्या क्या मोडस ऑपरेंडी है, आजकल क्रिमिनल किस तरीके का साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक होना जरूरी है, ताकि जब जैसे वो जागरूक बनेंगे तो उस तरीके से क्राइम कम होना चालू होगा।
1: बिल्कुल। आपसे मैं ये भी जानकारी चाहूंगी कि किस तरह के क्राइम ज्यादातर देखने में आ रहे हैं साइबर के तहत?
2: साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा तो विशिंग फ्रॉड हो रहा है, जिसमें लोगों को बैंक मैनेजर बन के फोन किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि आपका एटीएम बंद होने वाला है या आप उसको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो आप अपना काइंडली अपना एटीएम कार्ड के 16 डिजिट नंबर बताएं, आप अपना पिन बताएं, एक्सपायरी डेट बताएं। ये जानकारी कभी भी आपको लोगों को नहीं देना चाहिए, खासतौर से जब आपको सारे मैसेजेस अपने मोबाइल पे आए, जैसे ओटीपी आ जाता है, तो ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये पहला मोडस ऑपरेंडी है जो सबसे ज्यादा आजकल देखा जा रहा है साइबर क्राइम, जिसमें सबसे ज्यादा हो रहा है।
1: बिल्कुल।

0: और भी मोडस ऑपरेंडी है क्रिमिनल्स के, कि वो इंश्योरेंस फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी है, जिसमें वो इंश्योरेंस करा लेने के लिए आपको कॉल करते हैं, इवन आपको पुराना इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर वगैरह आपको बता के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें सुनकर जो सामने वाला व्यक्ति है वो कन्विंस होकर अपने सारे डिटेल्स को दे देता है, इवन उनके
1: बिल्कुल
0: अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो इससे भी बचने की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ फेसबुक, जीमेल, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। किसी का आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर दिया जा रहा है, या फिर किसी का फोटो को मॉर्फ करके अपलोड किया जा रहा है। तो ये सब भी सब सब सारे जो चीजें हैं ये साइबर
1: अच्छा
0: क्राइम की श्रेणी में आती हैं। तो ये सारी चीजों को जानना जरूरी है, अपने कितने प्रोफाइल को कितना शेयर करना है, किस क्या चीज को प्राइवेट रखना है, ये लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपने आप को ज्यादा, तो आप सेफ रहेंगे।
1: एक बात मैं और जानना चाहूंगी कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई बार हमें ये जानकारी नहीं रहती कि किस साइट का इस्तेमाल हम करें जो हमारे लिए सेफ है।
0: देखिए, कौन सी वेबसाइट जेन्युइन है, कौन सा फेक है, ये जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आप अगर जेन्युइन वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या कोई या आप कुछ सामान मंगवा लेते हैं, या आप कुछ ऑर्डर करते हैं, अगर वो जेन्युइन वेबसाइट से करेंगे तो आप लोगों को सही सामान सही वक्त पे मिल पाएगा। अदरवाइज अगर कोई फेक वेबसाइट पे आप लॉग इन कर जाते हैं, या वहां से सामान डिलीवरी के लिए अपना अकाउंट शेयर कर देते हैं, तो इसका फायदा सामने वाला क्रिमिनल उठा सकता है। आपके सारे क्रेडेंशियल्स को वो जान लेगा और आपके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा।
1: बिल्कुल
0: तो लोगों को जानना ये बहुत जरूरी है कि कौन से वेबसाइट जेन्युइन है, कौन से नहीं है। इसका सबसे इजी उपाय मैं बताता हूं कि जब भी आप लॉग इन करें, तो आपने देखा होगा कि जब आप लॉग इन करते हैं तो आप लिखते हैं www. कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम,
1: बिल्कुल
0: उससे पहले लिखा होता है HTTPS।
1: अच्छा
0: जिस भी वेबसाइट में HTTPS हो, उस वेबसाइट को माना जा सकता है कि वो कुछ हद तक जेन्युइन है।
1: अच्छा
0: तो आप जरूर देखें कि कौन सी वेबसाइट में HTTPS लिखा हुआ है। प्लस आप ये भी देखिए कि कौन, जो भी वेबसाइट्स के बारे में लोग, बहुत सारे आजकल फोरम्स बन गए हैं, उस फोरम्स में अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में लोग कमेंट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। किसी के साथ अगर कुछ घटना, फ्रॉड की घटना घटी रहती है, तो उस वेबसाइट के बारे में जरूर वो कंप्लेन फोरम पे जाके कंप्लेन किए रहते हैं। तो उस फोरम पे पढ़िए, उस वेबसाइट्स के बारे में पढ़िए, उसके बाद ही आप उस पे जाके कुछ सामान की खरीदारी करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें। अदरवाइज आपके क्रेडेंशियल का कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो आपको ही हानि पहुंचेगी। तो लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम जेन्युइन वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। अगर आप गूगल प्ले प्ले स्टोर पे जाके कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आप जरूर देखें कि उसके रिव्यूज कितने हैं, डाउनलोड्स कितने हैं। प्लस उसके आप जाके गूगल में डायरेक्ट कॉपी करिए उस ऐप के बारे में, और उसके फॉर्म्स में जाके पढ़िए कि क्या उस फॉर्म में फ्रॉड के बारे में किसी ने कंप्लेन किया हुआ है, क्या ये एप्लीकेशन फ्रॉड है कि नहीं है। प्लस ये भी आप देखिए कि अगर वो वेबसाइट खुलती है, उस वेबसाइट पे HTTPS लगा है कि नहीं, क्योंकि जो एस होता है वो सिक्योर सॉकेट लेयर का एस होता है, तो वो सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं साइन होती है। तो आप उस पे भी जाके चेक करिए कि HTTPS है, तो आप उस वेबसाइट को आप जेन्युइन मान सकते हैं।
1: अच्छा, एक टेक्निकल ऑफिसर होने के नाते और इस क्षेत्र से आप काफी दिनों से जुड़े हैं, तो आपके पास साइबर अपराध से संबंधित किस तरह के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं?
0: आजकल जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का कंप्लेन हमारे यहाँ आ रहा है वो एटीएम फ्रॉड्स के हैं, जिसमें लोगों को बैंक मैनेजर बनकर कॉल किया जाता है, उनके कार्ड का डिटेल मांगा जाता है, सामने से ओटीपी भी ले लिया जाता है। उस
1: बिल्कुल
0: ओटीपी और कार्ड के क्रेडेंशियल्स को प्रयोग करके जो क्रिमिनल है, फ्रॉडस्टर है, वो पैसे का निकासी कर लेता है। ये केसेस बहुत ज्यादा अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं। और प्लस अभी कुछ बच्चे हैं जो फेसबुक और जीमेल का प्रयोग किस तरीके से करना है, उनको अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए उसका प्रयोग करना है, तो वो फेसबुक, जीमेल, व्हाट्सएप में कुछ फोटोज किसी के अपलोड हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हमारे पास आ रहे हैं, जो जानने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है कि किस तरीके से अपने कार्ड को सेफ रखना है और अपने क्रेडेंशियल्स को सेफ रखना है। आपको सिक्योरिटी किस तरीके से अपने फेसबुक की रखनी है, अपने व्हाट्सएप की रखनी है, या जीमेल का रखना है, ये जानने की बहुत जरूरत है।
1: ज्यादातर देखा जा रहा है सौरभ जी की महिलाएं और बच्चियां इसकी गिरफ्त में आ रही हैं, और कहीं कहीं हमारे युवा वर्ग इससे जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से सुरक्षित रहने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: आजकल डिजिटल युग में फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ये सोशल प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है। बट हाँ, हम प्राइवेसी सेटिंग खोलें, वहां हमको कौन कितना देख सकता है, हम किससे फ्रेंडशिप करें, किसको हम जानते हैं, उन्हीं लोगों से हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं, तो हमको ये प्रॉफिट मिलेगा कि हम चीजों को सीखेंगे भी और हमारा कुछ क्रेडेंशियल्स को कोई गलत प्रयोग नहीं करेगा।

0: जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: आप सेटिंग पे जाइए, प्राइवेसी सेटिंग में जाके चेक करिए कि कहाँ पे कितने लोग आपको देख सकते हैं, कितने लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कितने लोग आपको लाइक और शेयर कर सकते हैं, तो आप अपनी प्राइवेसी को सही कर पाएंगे।
1: हाँ हाँ। और सर जी, आपने एक बात और कही कि एटीएम के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और साइबर क्राइम थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर हम किस तरह की सावधानियां बरतें।
0: आजकल जो एटीएम्स हैं, उस एटीएम्स के लिए जो क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, आपने क्रेडेंशियल्स लोगों को शेयर कर देते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चलो मेरा कोई रिलेटिव है वो करना चाहता है, मैं कर देता हूं शेयर, बट जो ओटीपी है, आपका क्रेडेंशियल अगर कहीं से शेयर भी हो जाता है, बट जो ओटीपी है वो आपको हमेशा बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। अच्छा। जो आपके पास आएगा, तो कभी भी पहले तो आप अपना क्रेडेंशियल ही शेयर ना करें, लेकिन अगर कहीं से आपको डिफॉल्ट कहीं आपको पता नहीं चला फिर भी शेयर हो गया है, उस ओटीपी को हमेशा आप सेफ रखिए। जब तक आप ओटीपी को शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हो पाएगा।
1: हाँ।
0: तो अपने पिन को, ओटीपी को और कार्ड के क्रेडेंशियल को सेफ रखना बहुत जरूरी है।
1: श्रोताओं, टेक्निकल ऑफिसर साइबर क्राइम सौरभ जी ने जो भी बातें अभी आपसे बताई कि साइबर क्राइम के तहत जो भी अपराध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। जब हम किसी गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में जरूर हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जो भी गैजेट या मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या फिर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, तो इन सब के इस्तेमाल में थोड़ी सावधानियां हम जरूर बरतें। सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: श्रोता मित्रों, इस बातचीत के साथ ही हमारी आज के कार्यक्रम और साथ चले का वक्त अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।

साइबर अपराध एक गंभीर समस्या। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे श्री सुमित प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक साइबर एवं सीआईडी, एवं श्री सौरभ कुमार, तकनीकी विशेषज्ञ साइबर। भेंटकर्ता थी सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की। और इसी के साथ आओ साथ चले कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनिए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांस सरगम 4:35 पर, 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनते हैं युवाणी। आज कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा असफलता, डर या सीख, तुलना का बढ़ता दबाव। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बातें होंगी इतिहास में आज के दिन के बारे में। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। 5:30 पर श्रमिक लोक औद्योगिक प्रसारण। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस विषय पर चर्चा होगी। संतुलित भोजन खाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं, औद्योगिक सामाजिक विकास का आधार श्रमिक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। शाम के ठीक 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है खेतों का नियमित भ्रमण करें। इस विषय पर प्रश्नोत्तरी में प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, वेट करता होंगे अरविंद कुमार मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की।

आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करें। इस विषय पर इस कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। 7 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 7:15 पर। आज ये कार्यक्रम उरांव भाषा में आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है संतुलित भोजन और हमारा स्वास्थ्य। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगी बड़ों का सम्मान करें रहेंगे सुखी। इस विषय पर मोबाइल फोन का संतुलित प्रयोग। प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुनेंगे 7:45 पर। फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा सुनना ना भूलिए रात के 8 बजे। सुर्खियों में 8:30 पर। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। न्यूज एट 9:09 उर्दू में समाचार 9:15 पर। पब्लिक स्पीक 9:30 पर। सुनहरी यादें रात के 10 बजे। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन ताल चौताल। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में राग शंकरा में गायन ताल शुलताल में पंडित सियाराम तिवारी। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से। अभी आप कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप सुनिए सांझ सरगम।

आकाशवाणी की रांची केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत, विश्वजीत का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दबंग से, राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, संगीत है साजिद वाजिद का और बोल है फैज अनवर के।

अब सुनिए फिल्म मैचेंट विनोद का बेहद खूबसूरत गीत राब्ता। इस गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, संगीत है प्रीतम का और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: विशाल मिश्रा के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म एनिमल से। गीत की बोल हैं राजशेखर के और संगीत से सजाया है इस गीत को विशाल।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए फिल्म देवदास से। उदित नारायण और श्रेया घोषाल के स्वर में संगीतकार हैं इस्माइल दरबार और गीतकार हैं नुसरत बद्र।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के ठीक 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की सीआईडी जांच की निष्पक्षता पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट कराने के आरोपों से घिरे अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर क्यों हिचक रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि जिस अधिकारी की भूमिका पर ही जांच प्रभावित करने के गंभीर सवाल खड़े हों, उस पर कार्रवाई किए बिना सीआईडी की जांच और उसकी निष्पक्षता पर आखिर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ईडी झारखंड, दिल्ली और कोलकाता में आज 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने यह दबिश दी है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। रांची के कोकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज आपराधिक कानून और दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि रात के समय पीड़िता के घर में प्रवेश करना, उसके कपड़े उठाना और उसे पकड़ना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को दी गई सजा को कम कर दिया है। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के शोधकर्ताओं ने पानी की बर्बादी को कम करने वाला इनबिल्ट आरओ सिस्टम विकसित किया है। यह नई तकनीक पानी की बर्बादी को कम करता है और बचे हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करने में सक्षम है। भारतीय पेटेंट भी इस तकनीक को मिल गया है। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाली रिसर्च टीम में प्रोफेसर विवेक वाजपेयी, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर माधव रतुड़ी और रिसर्च स्कॉलर प्रिंस आनंद शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार।

स्टूडियो की घड़ी में इस समय संध्या के 5:03 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार कुमार सानू के स्वरबद्ध चंद चुनिंदा नगमे। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या के 6:00 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार होगा, और संध्या के 6:02 पर हम आपके साथ होंगे क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम हो अखड़ा को लेकर। हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 6:30 पर। संध्या के 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 7:15 पर। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। रात्रि के 10:00 आप आनंद लेंगे गजलों के कार्यक्रम महफिल का, और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। करते हैं आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार कुमार सानू को। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं आइए करते हैं आज के कार्यक्रम गुलदस्ता की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से ये गीत आपने सुना, गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में, बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और धुन थी राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी से।

0: गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में श्रोताओं ये गीत आपने सुना फिल्म साजन की बाहों में से। बोल लिखे थे समीर ने और धुन थी नदीम श्रवण की। इस गीत के बाद आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-34

0: 5-4-0-6-0 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाए। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार कुमार सानू के स्वरबद्ध चंद चुनिंदा नगमे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में ही, फिल्म सलामी से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन है नदीम श्रवण की।

फिल्म सलामी के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाए गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर पर चुनिंदा नगमे, और इस गीत के साथ ही अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 होने जा रहे हैं। अब सुनेंगे हमारा आज का अगला कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जैविक कीटनाशक एवं लाभ इसके बारे में जानेंगे। जैविक कीटनाशक प्राकृतिक जैसे पौधों, सूक्ष्म जीवों और खनिजों से बनने वाले उत्पाद हैं जो फसलों को बिना किसी जहरीले अवशेष या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कीटों से बचाते हैं। जैविक कीटनाशक के तीन मुख्य प्रकार हैं, वनस्पतिक सूक्ष्म जीव आधारित, तीसरा खनिज आधारित। वनस्पतिक में नीम, लहसुन या तंबाकू जैसे पौधों के अर्क बनते हैं। सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशक में बैक्टीरिया या कवक जैसे प्राकृतिक जीवों का उपयोग करते हैं। खनिज आधारित में सल्फर और तांबे जैसे प्राकृतिक खनिजों से तैयार होते हैं। ये फंगस और कुछ कीटों की रोकथाम करते हैं। जैविक कीटनाशकों के प्रयोग करने से आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि ये मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करते और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इनके उपयोग से पैदा होने वाले फल और सब्जियां विष मुक्त होती है, जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। ये केवल हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं और मधुमक्खी जैसे मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नीम के पत्ते, गोमूत्र जैसी स्थानीय चीजों से नीम अस्त्र जैसे जैविक कीटनाशक घर पर ही कम खर्च में बनाए जा सकते हैं। नीम की पत्तियों को अच्छी तरह पीसकर चटनी या पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 5 लीटर पानी में मिलाकर रात भर लगभग 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। सुबह इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं और सूती कपड़े से छान लें। इस तैयार अर्क में थोड़ा सा साबुन का घोल मिलाएं ताकि ये पत्तियों पर ठीक से चिपक सके और पौधों पर स्प्रे करें। नीम के कीटनाशक का छिड़काव हमेशा सुबह जल्दी या शाम के समय करें। तेज धूप में स्प्रे करने से पत्तियां झुलस सकती हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप अच्छी कंपनी वाली नीम का तेल खरीदकर भी पानी और तरल साबुन के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, ये कीटनाशी मिट्टी में जल्दी घुल जाते हैं और फसल पर इनका कोई हानिकारक रासायनिक अवशेष नहीं बनता है। तो अभी हमने आपको जानकारी दी जैविक कीटनाशक एवं लाभ के बारे में।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, इस संदेश के बाद आनंद लेते हैं उरांव लोकगीत का रमेश लकड़ा और साथी के स्वरों में।

0: किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के बाद जानकारी लेते हैं फलदार वृक्ष की खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डेबरा होनहागा। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
1: मेरा नाम डेबरा होनहागा है, गांव पुपुरनिया, प्रखंड फुटपानी।

0: आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
1: जोहार।
0: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो फलदार वृक्ष में फिलहाल आपने कौन कौन से वृक्ष लगाए हैं, और साथ ही हम अपने किसान भाई बहनों को बता दें कि आज जो है डेबरा जी हमें फलदार वृक्ष की बागवानी किस तरह से करनी चाहिए उस विषय में जानकारी देंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि फलदार वृक्ष में अभी फिलहाल आपने कौन कौन से वृक्ष लगाए हैं,
1: किसान बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फलदार वृक्ष हैं उसमें आम है और पपीता नींबू है।
0: तो डेबरा जी, खेती बाड़ी के साथ साथ आपको फलदार वृक्ष लगाने का सुझाव कहाँ से मिला?
1: फलदार वृक्ष तो ब्लॉक की ओर से, उसमें हमारे पंचायत सचिवालय है, वहाँ से रोजगार सेवक हैं, तो वो हमको दिशा बताया कि सरकार की ओर से योजना है।
0: अच्छा।
1: निःशुल्क है।
0: अच्छा, तो ये निःशुल्क आपने वहाँ से पौधे प्राप्त किए हैं। अच्छा, तो आम के जो आपने अभी पौधे लगाए हैं तो किस तरह की मिट्टी में लगाए हैं?
1: यहाँ की मिट्टी दोमट मिट्टी है।
0: अच्छा, तो दोमट मिट्टी में पौधा लगा हुआ है। तो इसमें आपने जो लगाया है आम के पौधे, अभी आपने कितने एकड़ में लगाए हुए हैं?
1: इसका क्षेत्रफल है 1 एकड़ में।
0: अच्छा, तो 1 एकड़ में कितने पौधों की जरूरत होती है?
1: 1 एकड़ में 112 पौधे की जरूरत होती है।
0: 112।
1: जी
0: जी। तो खेत की तैयारी आपने किस तरह से की?
1: सबसे पहले गड्ढा की तैयारी की है, 3x3 का गड्ढा तैयार किए हैं, तो दूरी है 15x15 में। अच्छा। प्रत्येक मैंने गड्ढा की दूरी
0: जी। तो मिट्टी में खाद उर्वरक की तो जरूरत होती है, तो किस तरह की मतलब खाद और उर्वरक का आपने इस्तेमाल किया है?
1: ब्लॉक की ओर से हम लोग को खाद कीटनाशक मिला था
0: जी। तो रासायनिक या जैविक खाद मिला था?
1: उसमें जैविक खाद मिला था।
0: अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं?
1: 15x15।
0: अच्छा, तो आप अभी कौन कौन सा किस्म लगाए हुए हैं?
1: अभी दो साल हो चुका है, इस बार तीसरा चाल होने चल रहा है, उसमें अभी फूल लगी है उसमें।
0: अच्छा, तो किस्म
1: वो ऐसा पता नहीं चल रहा है अभी, पल कौन सा पल लंगड़ा है कि अमरपली है, तो हम लोग को जानकारी दिया गया है कि इसमें मिक्स मिला हुआ है।
0: अच्छा, तो जहाँ से आपने बीज प्राप्त किया था वहाँ से मतलब पैकेट में उपलब्ध हुआ था या फिर ऐसे ही बीज कहाँ से लेके आया था?
1: ये अब नर्सरी किया हुआ है। अच्छा। किया हुआ है पौधा, हम लोग को दिया गया
0: पौधा मिला था। अच्छा, तो पौधा मिला था तो उन्होंने मतलब पौधे ही दे दिए थे, बीज नहीं। अच्छा, तो इसमें पानी या सिंचाई की आवश्यकता कब कब होती है? जब पौधा लगा लेते हैं उसके बाद पानी?
1: इसमें पानी की हमारे वहाँ पर एक कुआं बनाए हैं, वहाँ सप्ताह में दो दिन पानी उसको सिंचाई करते हैं।
0: सप्ताह में दो बार। और अभी तो गर्मी का मौसम है तो
1: गर्मी को थोड़ा सा अभी उसको तीन टाइप मैंने सप्ताह में तीन दिन कर देते हैं।
0: तीन दिन देते हैं तो सुबह की शाम में?
1: ऐसे सुबह में।
0: अच्छा, और इस पे क्या कीट और रोग लगते हैं?
1: पत्ती उसमें कुछ कीड़ा लगते हैं, तो उसमें हम लोग उसमें जैविक तेल होता है आपका नीम तेल। अच्छा। उसको डालते हैं
0: पौधों पर। अच्छा, तो आम के पेड़ पर मतलब फूल कब तक आ जाता है, कितने दिन लग जाते हैं फूल आने में?
1: ऐसा तो देखिए उसका सीजन आपका जनवरी से ही ये हो जाता है,
0: फूल आना हो जाता है। अच्छा, मंजर जब आ जाते हैं तो उनको जैसे कि कितने साल के बाद मंजर आने के बाद पेड़ों में जो है आम का फल?
1: 20 से 25 दिन जैसा
0: मंजर आने के बाद। हाँ। थोड़े बड़े होते हैं?
1: थोड़ा बड़ा होता है।
0: जी, तो आपने बताया कि आम के पौधे के अलावा भी फलदार वृक्ष लगाते हैं, जैसे नींबू हुआ, पपीता हुआ, तो पपीता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
1: हाँ, उस तरह से वहाँ
0: ये आपका मतलब
1: ये आम का वाले और पपीता भी है, तो

0: पपीता भी ऐसे अब 60 पौधा लगाए हैं जो वो बरसात के समय में उसको लगा दिए हैं, तो 3-4 महीने के बाद फल देना फूल देना चालू हो गया
1: अब।
0: हाँ चालू हो गया।
1: तो कैसे उसको भी किस तरह से लगाए, विधि मतलब कैसी मिट्टी में लगाए?
0: तो दोमट मिट्टी है उसी आम बगान के अंदर में ही, सबसे गड्ढा एक बाई मैंने 1x1 फीट का गड्ढा तैयार किए हैं, दूरी 8 फीट का।
1: अच्छा।
0: दूरी में लगाए।
1: अच्छा, और पानी की व्यवस्था? पानी
0: की व्यवस्था तो एक कुआं से ही सिंचाई करते हैं।
1: अच्छा, कुछ मशीन वगैरह लगा?
0: हाँ, उसमें कुआं में टुलू पंप लगाए हैं।
1: अच्छा, तो उसी से ही
0: सिंचाई करते हैं।
1: अच्छा, और उसमें पपीता में फूल और फल कब तक आ जाते हैं?
0: वो पपीता में ये पिछले 2021 में बरसात में लगाए हैं, अभी फल देना चालू हो गया, शुरू हो गया।
1: अच्छा, तो ये मार्केट तक ले जाते हैं सब्जियों को या फल को?
0: तो अभी हम यहाँ लोकल हमारा बाजार होती है वहाँ पर हम सप्लाई करते हैं।
1: अच्छा, तो मतलब कीमत कितनी रखते हैं
0: यहाँ? हाँ, कम पर पीस में 20-30 रुपये।
1: अच्छा, तो मुनाफा कितना हो जाता है?
0: मुनाफा तो निकलते ही है।
1: हाँ। अच्छा, तो अंत में कुछ हमारे किसान भाई बहनों से कहना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों से मैं ये अनुरोध है कि मैंने लगन रहे तो कोई भी ये
1: खेती बाड़ी से
0: है ना,
1: लगन से करेंगे तो खेती बाड़ी में अच्छा जो फसल लगाएंगे उसकी प्राप्ति
0: कर सकते हैं।
1: तो आपने आज अच्छी जानकारी दी हमें, हमारे किसान भाई बहनों को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, अभी आप जानकारी ले रहे थे फलदार वृक्ष की खेती, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डेबरा होनहागा। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं हो लोकगीत सुभाष चंद्र होनहागा व साथी।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहर।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रदेश भाजपा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों पर

0: दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने, दोषियों की गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कल से 4 दिवसीय चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि कल रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और गढ़वा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची में आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू करेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। नालसा, नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर आज लोहरदगा में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने की अपील की गई। साथ ही कानूनी अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098, 100 और 112 पर सूचना देने का आग्रह किया गया। सरायकेला खरसावां पुलिस ने डकैती की एक बड़ी साजिश को वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया है। पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, गोली और 3 दोपहिया वाहन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। दुमका जिले में लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। इससे सब्जी और खासकर फूलगोभी की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि खेतों में पानी जमा होने के कारण पौधों की जड़ें गल गई हैं और बड़ी संख्या में पौधे सड़ने लगे हैं। इससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के पुत्र श्रेयस ने आज पूरे विधि विधान के साथ गिरिडीह स्थित बराकर नदी के तट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस मौके पर उनके परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ
1: ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱦᱚᱸ
0: ᱭᱟ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱟᱠ ᱱᱮᱞ ᱱᱟᱢᱟᱠ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱤᱱᱟᱹᱱ ᱵᱤᱥᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱤᱪᱠᱮᱱ ᱥᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱤᱭᱟ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱛᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱪᱟᱦᱟᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱨ ᱡᱚᱫᱤ ᱵᱩᱜᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱵᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱚᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱜᱤᱛᱤ ᱛᱤ ᱟᱸᱰᱚ ᱡᱚᱫᱤ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱵᱩᱜᱤᱛᱤ ᱠᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱟᱨᱤ ᱠᱮᱥ ᱰᱟᱠᱟ ᱱᱚᱛᱤ ᱮᱱ ᱢᱟᱥᱟᱨ ᱵᱤᱛᱟᱨ ᱠᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱤᱭᱚ ᱦᱚᱸ
0: ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱣᱟ ᱮᱸᱫᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱫᱩᱢᱵᱩ ᱠᱚ ᱵᱩᱫᱮᱛ ᱠᱚ ᱛᱮᱭ ᱠᱮᱱ ᱚᱱ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱥᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱮᱱ ᱵᱩᱫᱮᱛ ᱠᱚ ᱦᱮᱛᱨᱚ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱛᱮᱭ ᱠᱮᱱ ᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱦᱮᱛᱨᱚ ᱡᱟ ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱫᱮᱭᱚ ᱢᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱢᱵᱷᱟᱣ ᱱᱟ ᱛᱮᱭ ᱠᱮᱱ ᱚᱸᱰᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱜᱮ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱵᱟ ᱚᱣᱟ ᱯᱩᱨᱮ ᱠᱟ ᱨᱤᱠᱥ ᱰᱤᱵᱟ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱥᱤᱫᱷᱮ ᱥᱤᱫᱷᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱠᱚ ᱵᱮᱴᱟ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱟᱢᱵᱷᱟᱣ ᱚᱸᱰᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱨᱤᱠᱚᱨᱰ ᱚ ᱦᱩᱵᱟᱨ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱ ᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱤ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟ ᱪᱤ ᱵᱩᱜᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱵᱮᱴᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱠᱚ
1: ᱵᱟᱪᱟᱣᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱜᱟᱲᱤ ᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱟᱢᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮ
0: ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱞᱟᱜᱤ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
1: ᱛᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱦᱟᱞ ᱯᱷᱤᱞᱟᱞ ᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱟᱞᱮᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱞᱤᱱ ᱞᱮᱞ ᱱᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚᱵᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱵᱩᱪᱤ ᱦᱟ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱮᱛᱨᱚ ᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱮᱭ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱜ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱟ ᱯᱟᱛᱨᱚ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟᱭ ᱦᱩᱵᱟᱭ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱪᱤᱨ ᱜᱮ ᱞᱤᱨ ᱠᱮᱨᱟ ᱪᱤ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱛᱨᱚ ᱟᱸᱡᱟᱱ ᱚᱛᱮ ᱵᱟᱪᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱩᱯᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱥᱤᱠᱟᱭᱛ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚ ᱟᱥᱨᱟ ᱵᱚ ᱥᱟᱵᱩᱨ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮ ᱠᱚᱨᱤᱭᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱲᱤ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱭ ᱠᱚ ᱤᱵᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱟᱠᱟᱨ ᱨᱮᱭᱚ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱵᱤᱥᱣᱟᱥ ᱡᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱴᱟᱣ ᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱫᱟᱭ ᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱤᱫ ᱠᱮᱞᱚ ᱛᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱸᱡᱟᱱᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱠᱮᱛᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱯᱟᱠᱚ ᱜᱟᱡᱟ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱲᱩ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱮᱥᱮᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱱᱮᱞ ᱱᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱨᱱ ᱦᱚᱸ
1: ᱟᱵᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱵᱤᱧ ᱠᱚ ᱮᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱨᱤᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ
0: ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱵᱤᱧ ᱠᱚ ᱩᱢᱤ ᱛᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱱᱤ ᱠᱮᱥᱮᱥ ᱮᱠ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱤᱵ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱠᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱟᱥ ᱯᱟᱨᱤ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱥᱟᱞ 60,000 ᱨᱮ ᱛᱮᱞᱟᱱᱟ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱩᱥᱟ ᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱱᱰᱚᱱᱟᱜᱚ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚ ᱮᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱩᱢᱟᱭ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱮᱞᱠᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱥᱚ ᱟᱸᱡᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱜᱟᱨ ᱦᱩᱵᱟᱫᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱫᱮᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱤᱢᱤᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱮᱱ ᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱠᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱩᱛᱨᱟᱹ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ
0: ᱮᱥᱚ ᱡᱟᱛᱮ
1: ᱮᱱ ᱞᱚ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱢᱵᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱩᱠᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
1: ᱯᱟᱱᱛᱟᱨ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮᱨᱮᱝᱜᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱟᱨ ᱱᱤᱫᱮ ᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱠᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱴᱟᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱵᱩ ᱛᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮ ᱫᱚᱠᱟ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱪᱟᱞ ᱛᱮ ᱦᱚᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱨᱢᱮᱰ ᱡᱚᱠᱟᱞ ᱠᱟᱨᱚ ᱤᱭᱟ
1: ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ
0: ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱠᱚ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱜᱤᱛᱤ ᱠᱮᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱛᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱜᱤᱛᱤ ᱮᱱᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱠᱟᱨᱠᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱮᱱᱚ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱟᱵᱮ ᱯᱟᱠᱤ ᱴᱚᱠᱤᱭᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱟᱛᱚ ᱢᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱢ ᱛᱮ ᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱨᱱᱮᱞ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱮᱰᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱢᱮ ᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱜᱟᱲᱤ ᱨᱮᱜᱟ ᱦᱟᱥᱩᱢᱮ ᱤᱱᱛᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮ ᱡᱚᱠᱚ ᱮᱞᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱤ ᱞᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱᱟ ᱜᱟᱲᱤ ᱦᱟᱥᱩᱭ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱩᱭ ᱥᱩᱭ ᱛᱮ ᱮᱥᱩ
1: ᱯᱩᱨᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮᱱ ᱪᱤᱞᱠᱮᱱ ᱜᱷᱟᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱴᱟᱭᱤᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚ ᱱᱮᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱟᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮᱭᱚᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱞᱮ ᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱨᱤᱭᱚ ᱯᱨᱟᱭᱟᱥ ᱦᱩᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱱᱩᱭ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱤᱪᱲᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱞᱮᱞ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱵᱟᱠᱱᱮ ᱛᱮ 9 10 ᱠᱞᱟᱥ ᱡᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱵᱟᱠᱱᱮ ᱛᱚ ᱞᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱱ ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱰᱩ ᱜᱩᱡᱨᱟᱴ ᱤᱱ ᱯᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱛᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱫᱚᱞᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱚ ᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱮᱥᱚ ᱠᱟᱨᱟᱵ ᱟᱱᱩᱵᱷᱚᱵ ᱱᱟᱢᱮ ᱛᱟᱱᱟᱵᱩ ᱪᱮ ᱟᱵᱩ ᱟᱵᱩ ᱢᱤᱥᱤ ᱤᱨᱟᱠᱚ ᱪᱮ ᱦᱚᱱ ᱤᱨᱟᱠᱚ ᱡᱟᱭᱨᱚ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟᱵᱩ ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱚᱡ ᱜᱨᱟᱝ ᱨᱚᱠ ᱟᱵᱩ ᱫᱮᱯᱮᱝ ᱟᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱫᱩᱨᱤ ᱵᱟᱭᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱮᱥᱩ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱱᱜᱟᱣ ᱜᱷᱟᱴᱱᱟ ᱞᱟᱢᱮᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱩᱢᱮᱨ ᱩᱵᱟᱭᱨ ᱨᱮᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱟᱣᱨᱤ ᱦᱩᱵᱟ ᱚᱡᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱱᱮᱱ ᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱩᱠᱟᱞ ᱠᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱥᱩ ᱡᱚᱛᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱ ᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱨᱮ ᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱟᱭᱨ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱟᱣᱨᱤ ᱦᱩᱵᱟ ᱚᱡᱚ ᱫᱚ ᱤᱢᱤᱛᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟ ᱴᱮᱱᱟᱨ ᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱮᱞᱠᱟ ᱟᱫᱩᱱᱤᱠ ᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱮᱴᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱠᱟᱵᱮᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱪᱟᱣᱠᱮ ᱩᱨᱛᱤ ᱟᱡᱤᱠᱮᱞ ᱟᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱱᱟᱢᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱚᱵᱚᱴ ᱡᱩᱜ ᱵᱮᱴᱟᱣ ᱛᱮ ᱨᱚᱵᱚᱴ ᱛᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱵᱮᱴᱟᱣ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱮᱱ ᱨᱚᱵᱚᱴ ᱛᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱵᱮᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱠᱚ ᱟᱪᱩᱵᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱥᱩ ᱡᱟᱛᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟᱯᱟᱱ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱱᱚ ᱵᱚᱞ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱱᱚ ᱵᱚᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱩ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱟᱭᱞᱟᱣ ᱮᱱ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱡᱤᱢᱮᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹᱱ
0: ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱩᱯ ᱛᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱮᱞ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱯᱚᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱭᱟ ᱮᱢ ᱛᱟᱱ ᱵᱚ ᱯᱩᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱯᱩᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱥᱟ ᱟᱥᱛᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱦᱟᱛᱩ ᱥᱟᱭᱨᱮᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱦᱚᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱛᱤᱭᱟ ᱫᱩᱨᱠᱟᱨᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱯᱩᱪᱷᱟᱭᱱᱟ ᱥᱟᱨᱤᱨᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱱᱟ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱥᱩᱢᱮᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮ ᱤᱱ ᱟᱱᱩᱯᱟᱞᱟᱱ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱚᱛᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱟᱛᱩ ᱥᱟᱭᱨᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱩᱢᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱟᱥᱩ
1: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮᱫ
0: ᱱᱤᱱᱟ ᱵᱟᱱᱚ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ
1: ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱱᱰᱮᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱚ ᱛᱟᱨ ᱮᱱ ᱟᱬᱜᱤᱱᱤᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱫᱩᱵᱟᱠᱟ ᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱩᱭ ᱮᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱪᱤ ᱟᱭᱩᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱤᱱᱟᱹ
1: ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱦᱚᱠᱚ ᱦᱟᱛᱩᱨᱮᱱ ᱦᱚᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱮ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱨᱤᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱫᱩᱵ ᱨᱤᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱩᱵ ᱨᱤᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱛᱤ ᱯᱟᱭᱴᱤᱠᱟ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱨᱤᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱦᱚᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚᱭᱟᱠᱚ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
1: ᱠᱟᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱨᱤᱠᱚ
0: ᱤᱭᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱩ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱨᱤᱭᱚ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱮᱥᱩ ᱠᱮᱲᱮ ᱛᱮᱨ ᱜᱟᱞ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱯᱮᱛᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱱᱮᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱩᱞᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱩᱢᱮᱝ ᱨᱟᱸᱥ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱠ ᱫᱩ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱟᱸᱥᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱥᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱮᱸᱜᱟᱣ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱜᱤ ᱯᱟᱨ ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱟᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱚ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱵᱚ ᱞᱮᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱱᱜᱤᱱᱟᱛ ᱞᱟᱯᱟ ᱵᱚ ᱞᱮᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱱᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱚ ᱫᱚ
1: ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱛᱨᱚᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱠᱤᱱ ᱟᱱᱩᱵᱷᱚᱵ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱦᱚᱠᱚ ᱟᱜᱟᱠᱚ ᱪᱤᱞᱠᱤᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱤᱱᱠᱟᱞᱤᱧ ᱟᱫᱮ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱮ ᱛᱨᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱛᱨᱚᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮᱵᱚ ᱦᱩᱡᱩ ᱤᱰᱤᱭᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱟᱞᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱦᱚᱠᱚ ᱞᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱪᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱵᱤᱴᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱛᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱩᱯᱟᱞᱟᱱ ᱦᱩᱵᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱠᱟᱹᱭ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱣᱟᱭᱚ ᱦᱩᱵᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱚᱛᱤ ᱟᱫᱩᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩ ᱚᱛᱤ ᱟᱫᱩᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱮᱸᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱦᱟᱛᱩ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱨᱤᱱᱴ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱩ ᱡᱚᱝ ᱢᱩᱛᱤᱫ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱵᱮᱴᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱦᱟᱛᱩ ᱡᱚᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱴᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱟᱵᱚᱭ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱪᱮ ᱟᱹᱧᱟ ᱱᱮᱱ ᱠᱚᱢᱤᱱᱤᱴᱤ ᱠᱚᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱹᱧᱟ ᱢᱮᱥᱮᱡᱽ ᱡᱚᱫᱤ ᱮᱱᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱤᱧ ᱵᱤᱴᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮᱨ ᱮᱱᱠᱚ ᱢᱮᱥᱮᱡᱽ ᱡᱚᱫᱤ ᱟᱹᱧ ᱞᱮᱞᱮᱛᱮ ᱤᱧ ᱥᱟᱞᱟᱜᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱞᱚᱠᱟᱞ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱠᱚᱧ ᱞᱮᱞᱮᱛᱮ ᱟᱭ ᱥᱚᱡᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱩᱨ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱞᱮᱞᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱩᱪᱤᱨ ᱜᱮᱞᱮᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱩ ᱫᱟᱹᱣᱨ ᱜᱟ ᱨᱤᱡᱟᱞᱴ ᱦᱚᱸ ᱮᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱱᱟᱢᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱛᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱱᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱥᱩ ᱥᱩᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱵᱟᱞᱢᱩᱪᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱮᱱ ᱨᱮᱠᱮ ᱪᱤᱠᱮ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱟᱱᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱮᱱᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱭᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱵᱟ ᱟᱠᱚ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱵᱤᱛᱤᱢ
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आई मतन ताई कि नबु बेपटा जगर रे अबु पत्रकारिता त्रिया क्षेत्र रे चिलके होलोकोचो को चिलके सामाजिक समस्या को निनको निर्लमोतना जपकर ताई कि ना किन स्याम कुदा अंडो जगनाथ हिसाब लोते ᱮᱱᱫᱚ ᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱤᱧᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱟᱜᱟᱱᱰᱚ ᱢᱮᱥᱤᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱠᱩᱨᱩᱰᱨᱩ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱩᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱲᱩᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱚᱞ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟ ᱱᱤᱠᱩᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱩᱞᱤᱛᱮᱭᱟ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱱᱤᱫᱮᱥᱚᱠ ᱥᱟᱢᱟᱪᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार छुहार।

नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं कैसे हैं आप? आशा नहीं बल्कि पूरा पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य ही व्यस्त भी होंगे। और इस व्यस्तता भरी जिंदगी में समय निकालकर आप हमें सुनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आप यूं ही अपना वक्त हमारे लिए निकालते रहें और हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि हर दिन हम आपके लिए इस कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियां लेकर हाजिर रहेंगे। तो श्रोताओं, आज सुबह जब आपने अपना फ़ोन अनलॉक किया होगा, यानी कि जब आपने सुबह उठ के अपना फ़ोन हाथ में उठाया होगा और उसे खोला होगा, तो हो सकता है आपका चेहरा देखकर आपका फ़ोन खुल गया हो या फिर आपकी उंगली की छाप से आपका फ़ोन खुल गया हो। और फ़ोन खुलने के बाद जब आपने YouTube या Instagram खोला हो तो आपकी पसंद के वीडियो आपके सामने आ गए हैं, है ना? ऐसा ही हुआ होगा ना श्रोताओं? तो जानते हैं आप इन सब के पीछे कौन सी जादुई ताकत काम कर रही है? और आपके मन में ज़रूर ये कभी ना कभी तो ये सवाल आता ही होगा कि कैसे मोबाइल फ़ोन को ये पता चल जाता है कि हमारा मूड कैसा है या फिर हम अभी क्या देखना पसंद कर रहे हैं, हमारी किस चीज़ की इच्छा है। और आपके मन में जो विचार चलते हैं ना, उसी से जुड़े हुए वीडियोस या फिर शॉपिंग ऐप के जरिए वो जिस सामान की खरीदारी आप करना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ज़रूर उठता होगा कि कैसे, आखिर कैसे हमारे मोबाइल को ये पता चल जाता है कि इस समय हमारा मूड कैसा है, हम कैसे वीडियोस देखना पसंद करेंगे, या फिर अगर शॉपिंग की बात की जाए तो अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जी हाँ श्रोताओं, इस सब के पीछे एक जादुई ताकत काम करती है और इस जादुई ताकत का नाम है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां AI ना हो। AI कहने से हमारा तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्यों ना इस तकनीक को सिर्फ इस्तेमाल करने की बजाय इसी में हम अपना एक शानदार भविष्य बनाने की कोशिश करें। और आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपके साथ इसी AI से जुड़ी हुई बातें करेंगे कि हमारे युवा दोस्त जो हैं, जो भी अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो कैसे AI के इस दौर में अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424 2 नंबर।

0: एक बार फिर नोट करें 8700014242। क्या
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे?
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। और अभी आप सुन रहे थे ये जरूरी संदेश, और इस संदेश से पूर्व श्रोताओं हम आपके साथ बातें कर रहे थे AI के बारे में, कि कैसे आज के समय में AI चुपके से हमारी ज़िंदगी में घुस चुका है, पूरी तरीके से घुस चुका है, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है। तो इस AI को कैसे हम अपने कैरियर के रूप में अपना सकते हैं, इसी के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बातें कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के उन सभी तमाम युवा दोस्तों को ये जानकारी देने जा रही हूँ कि वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। जो अपने कैरियर को लेकर हमारे श्रोता गंभीर है और आने वाले कल में एक शानदार मुकाम अपने कैरियर में हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए AI एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आज चारों तरफ एक ही चर्चा है कि AI आ गया है। इस AI के दौर में लोगों के मन में ये सवाल निश्चित तौर पे उठ रहे हैं कि AI तो आ गया तो क्या नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्या इंसानों का काम मशीनें करने लगेंगी। तो मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में ये बताना चाहती हूँ श्रोताओं, कि इतिहास में जब भी कोई बड़ी तकनीक आती है ना, तो वो पुरानी नौकरियों को ज़रूर बदलती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी नौकरियाँ ले जाएंगी या फिर आपकी नौकरियों को ख़त्म कर देंगे, बल्कि वो नए तकनीक के साथ आपके लिए ज़्यादा अवसर लेकर के आएगी आपके लिए रोज़गार के। अपने साथ ये नई तकनीक लाखों नए अवसर के दरवाजे आपके लिए खोलती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने पर भी श्रोताओं बिल्कुल ऐसा ही हुआ था ना, इसलिए AI के आने पर भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे समझने और इसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक आम युवा इस AI की दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाए। तो बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता होगा जो अभी अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं कि AI का मतलब सिर्फ भारी भरकम कोडिंग, कंप्यूटर साइंस या गणित है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। कोडिंग ज़रूर है इसमें, कंप्यूटर साइंस भी है, लेकिन पूरी तरीके से ये उसके ऊपर निर्भर नहीं है। AI का क्षेत्र आज इतना बड़ा हो चुका है कि इसके हर बैकग्राउंड में युवा के लिए जगह है। तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या गणित के छात्र हैं, तो तकनीक के जरिए आपके रास्ते खुले हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिन्हें आज दुनिया में डेटा जादूगर भी कहा जाता है। आपका काम इसके दौरान काम जानकारियों को समेटकर कंपनियों के लिए सही फैसले लेना होता है। इसके अलावा आप मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हैं, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचना और सिखाना भी सिखाते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, यानी कि हमारा हर युवा तो टेक्निकल क्षेत्र में नहीं हो सकता है। तो अगर आप टेक्निकल लाइन से नहीं जुड़े हैं, आपने आर्ट्स या कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई की है, तो क्या आपके लिए AI में कोई जगह है? तो बिल्कुल श्रोताओं, आपके लिए इसमें जगह है। आज के समय में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम का एक कैरियर बहुत तेज़ी से उभर रहा है। इसके लिए आपको कोडिंग नहीं बल्कि इसकी सही भाषा को समझनी होगी। AI जैसे टूल्स जैसे कि ChatGPT या अन्य सॉफ्टवेयर से ही सही काम निकलवाना और उन्हें क्या निर्देश देने हैं, ये काम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर

0: भी करता है। अगर आपकी कल्पना शक्ति और भाषा अच्छी है तो ये कैरियर आपके लिए है। इसके साथ ही AI का इस्तेमाल सही तरीके से हो और इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए AI एथिक्स एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होती है। इसमें कानून, फिलॉसफी और सोशल साइंस के युवाओं की काफ़ी ज़्यादा मांग है, तो आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप तकनीक से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इसमें बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी बहुत महंगे कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आज इंटरनेट के इस दौर में ज्ञान सबके लिए मुफ्त या फिर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। आप घर बैठे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म में AI के बुनियादी कोर्सेज सीख सकते हैं। शुरुआत हमेशा बेसिक से करें। AI के छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करना आप यहाँ सीख सकते हैं और आप बहुत गौर से ये देखें कि ये कैसे काम करता है। तो जिसे आप नौकरी की ज़रूरत है वो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएं और इसकी विस्तृत जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए आप ले सकते हैं। मोबाइल जो आपके हाथ में है ना दोस्तों, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपके लिए अथाह ज्ञान भी छुपा हुआ है। बस ज़रूरी है सही कदम की। तो आप गेम खेलने की आदत को छोड़ें, सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा वक्त ना बिताएं, बल्कि सही दिशा में आप अगर मोबाइल के जरिए काम करते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपको अपने अच्छे कैरियर की तरफ ले जाने में सहायता करेगा। क्योंकि श्रोताओं, मशीनें कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, वे इंसानी जज्बात, रचनात्मकता और हमारी सूझबूझ की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मशीनें सिर्फ एक टूल है और असली ताकत हमेशा इंसान के हाथ में रहेगी। इसलिए खुद को समय के साथ अपग्रेड कीजिए, नई स्किल्स सीखिए और इस तकनीक की क्रांति का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि हमारे युवा, देश का युवा अपनी मेहनत और सूझबूझ से AI के इस दौर में न सिर्फ अपना कैरियर चमकाएगा बल्कि देश को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो क्यों ना आज ही से इस विषय पर शुरुआत की जाए और आप सर्च कीजिए AI से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने मोबाइल में। गूगल के क्रोम में जा करके आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका है। इसलिए मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, अपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। गेम कम से कम खेलें, अपने मनोरंजन के लिए आप ज़रूर खेलें पर उसे लत में बिल्कुल भी ना बदलें। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए हो, ना कि समय की बर्बादी के लिए। वहाँ आप सिर्फ रील्स ना देखते रहें बल्कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाकर नई नई स्किल्स को सीखने में अपना समय लगाएं। तो श्रोताओं, अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे AI से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में। अब इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं कुछ ज़रूरी संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांकेर रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

इन संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब इन जानकारियों के बाद हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत के माध्यम से अभी हमने आपका मनोरंजन किया। आइए अब कार्यक्रम में एक बार फिर से लौटते हैं और आप सभी कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना। श्रोताओं, जैसा कि आप ये जानते हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, ये बनता है प्यार और देखरेख से। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की वो देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें

गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता या जो वर्तमान में किसी संस्थागत देखरेख में हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार की देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। तो आइए इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो श्रोताओं, ये गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है पर एक अस्थाई व्यवस्था है जहाँ पर बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में न चला जाए, तब तक वो यहाँ रहता है। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं श्रोताओं, तो आप भी पालक माता पिता बनकर इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे का पालक अभिभावक बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि माता और पिता दोनों की आयु को मिलाकर अभिभावक की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। और अगर कोई अकेला व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति बालिका की चाह रखता है तो उसे ऐसे में बालिका नहीं दी जा सकती। तो श्रोताओं, अगर आप भी पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है और यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप पालक माता पिता बनने के लिए तैयार हैं। परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों की ओर हाथ बढ़ाएं और उन्हें अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इससे जुड़ी हुई अधिक जानकारी हेतु आप जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसका फ़ोन नंबर है 9955131364, एक और फ़ोन नंबर है 9090700489, आप इस नंबर पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त के कार्यालय तीसरे तल्ले में जाकर आप इससे जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। तो श्रोताओं, इन जानकारियों के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी भी अब ये इशारा कर रही है कि कार्यक्रम युवाणी से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गाँव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहाँ तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
8: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
9: कंडोम,
8: गर्भ निरोधक गोलियां,
10: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
11: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
13: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
12: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
14: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
15: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
14: कैसे?
15: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
14: इतना इजी?
15: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
14: ना भाई ना।
15: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
16: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
17: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत 3 शहरों में ईडी की छापेमारी जारी। TMC सांसद नदीमुल हक से जुड़े अवैध वित्तीय लेनदेन के मामले में कार्रवाई। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की अस्थियां बराकर नदी में विसर्जित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत कई दलों के नेताओं ने परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। रांची में NCCF के मोबाइल वैन यूनिट से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा प्याज। भाजपा का कल से 4 दिवसीय राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग। और दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र के कप्तान ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी। 250 रन की यादगार पारी खेलकर बनाए कई रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। TMC के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े झारखंड समेत 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद यह दबिश दी है। रांची के कुकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी छापेमारी कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के पुत्र श्रेयस ने आज पूरे विधि विधान के साथ गिरिडीह स्थित बराकर नदी के तट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस मौके पर उनके परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दलों के नेताओं ने दिवंगत सुदिव्य कुमार के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की।
9: गिरिडीह नहीं बल्कि झारखंड और झारखंड विधानसभा के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं कह सकता हूं कि झारखंड विधानसभा में जो मंत्री हर विषय पर विधायकों के लिए जवाब देने के लिए कोई खड़े होते थे तो सुदीप कुमार शर्मा बड़ी मुखरता से अपनी बातों को रखते थे।
17: इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सिरिवेला प्रसाद भी गिरिडीह में दिवंगत सुदिव्य कुमार के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बधाया।
18: बहुत दुख है, ये मेरा पता है, मैं भी ऑब्जर्व किया मिनिस्टर का, ये अच्छा आदमी है, वेरी सिस्टमैटिक, उनका सोच भी अच्छा है, ये अच्छा सलाह भी दे रहा है, ये रियली ग्रेट लॉस है झारखंड का, जेएमएम का ये ग्रेट लॉस है, इसलिए हम लोग इधर आए परिवार मिलके कंडोलेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं।
17: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन पर आज रांची विश्वविद्यालय में शोक सभा का आयोजन हुआ और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने सुदिव्य कुमार के योगदान को याद किया।
19: स्वर्गीय सुदेव कुमार जी का झारखंड में वास्तव में वो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाह रहे थे। इतने कम समय में जो उनका शिक्षा मंत्रालय में टेन्योर था उसमें वो बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आए थे जो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप थी। सभी कर्मचारियों की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से यही होगी कि उनके सपने को हम पूरा करें।
17: केंद्र सरकार ने नागरिकों को राहत देने के लिए बड़ी पहल की है। रांची में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF के मोबाइल वैन यूनिट के माध्यम से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ग्राहकों को प्याज दिया जा रहा है। लोगों ने NCCF के इस पहल की प्रशंसा की है।
20: एक आदमी को 2 किलो ही दे रहा है, 70 रुपया लिया 2 किलो का, राहत तो है। बाजार में 50-60-70 का रेट है तो यहाँ पे 35 में दे रहा गवर्नमेंट, तो राहत तो है।
21: एक गाड़ी लगा हुआ है सरकार का तो ले लिए 2 किलो, 70 रुपए में 2 किलो, 35 रुपए किलो।
22: गाड़ी देखे, गाड़ी में पोस्टर लगा हुआ, भारत सरकार सौजन्य से चल रहा है, महंगाई के दौर में बहुत राहत है।
17: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 9 सितंबर को वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी धुन के साथ सामुदायिक नेतृत्व वाली कार्रवाई के केंद्र में रखा गया है। इसी धुन से हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी प्रबंधन समितियों के त्वरित गठन और संचालन को गति मिलेगी। सुपोषित भारत की परिकल्पना को कार्य करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला पोषण अभियान चलाया जाएगा जो विकसित भारत 2047 की नींव है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने, दोषियों की गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कल से 4 दिवसीय चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया कि कल रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और गढ़वा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची में आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू करेंगे।
23: 48 घंटा का समय समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में युवाओं पर जो दर्ज FIR है वो वापस हो, जिस तरह सामने बातें आ रही है और बिना सीबीआई जांच का CID सक्षम नहीं है, इसीलिए हम लोगों का मांग है कि FIR दर्ज जो है उसको वापस सरकार ले और CBI जांच कराए।
17: सरायकेला खरसावां पुलिस ने डकैती की एक बड़ी साजिश के वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया। पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, गोली और 3 दोपहिया वाहन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।
24: 19 अगस्त को जो हुआ था वो बंसा शराब दुकान में लूट का प्रयास हुआ था और फिर उसके बाद माउंट 10 व्यू होटल में लूट का घटना हुआ था, तो उसी के आलोक में एक SIT का गठन किया था। टोटल 6 अभियुक्त हम लोग गिरफ्तार किए हैं। घटना में इस्तेमाल किए हुए 3 पिस्टल है, साथ में लोहे का हथौड़ा था और एक दावली, उसे भी हम लोग बरामद किए हैं।
17: रांची में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची सदर अस्पताल के आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस पहले से तत्पर थी। इसी क्रम में सदर अस्पताल परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उसने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में 13 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 9 और 10 सितंबर को कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। 9 सितंबर को बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 10 सितंबर को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में भी कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 13 सितंबर तक राज्य के कई इलाके में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 दिनों के बाद तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। दलित ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र के कप्तान ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। चेन्नई में उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ 250 रन की यादगार पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ईशान ने मुकाबले के दूसरे दिन आज अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए पहले दोहरा शतक पूरा किया और इसके बाद 250 रन के आंकड़े तक पहुंचे। ईशान ईस्ट पूर्वी क्षेत्र के लिए दलित ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत 3 शहरों में ईडी की छापेमारी जारी। टीएमसी सांसद नदीमुल हक से जुड़े अवैध वित्तीय लेनदेन के मामले में कार्रवाई। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की अस्थियां बराकर नदी में विसर्जित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत कई दलों के नेताओं ने परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। रांची में एनसीसीएफ के मोबाइल वैन यूनिट से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा प्याज। भाजपा का कल से 4 दिवसीय राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग। और दलित ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र के कप्तान ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी। 250 रन की यादगार पारी खेलकर बनाए कई रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
0: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है। बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
1: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
0: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
1: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
2: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
25: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
26: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
27: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
26: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
27: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
26: माहवारी प्रारंभ होती है,
27: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
26: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
28: हर ब्रांड के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
29: एक चाबी है CKYC ID।
28: CKYC मतलब?
29: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
28: वाह, RBI कहता है
29: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
30: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: का कहना है कि यूपीआई ने उनके व्यवसाय को काफी आसान बना दिया है।
1: देखिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन या कैशलेस ट्रांजेक्शन का 10 साल हो चुका है। मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार का सबसे बहुत अच्छा पहल था ये। हम जैसे मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, जिनको पैसे रखने में दिक्कत होता है, जैसे गल्ले में काउंटर में चेंज रखना प्रॉब्लम होता है, तो कस्टमर आते हैं तो पैसा काटना होता है, तो चेंज देने में समस्या होती है। अब क्या, कस्टमर आते हैं तो अब क्या है, अब ऑनलाइन QR आ गया है, अब QR में पेमेंट कीजिए, आराम से हमारे बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है।
2: जब से UPI आई है सर, उसके बाद से हम लोगों को चेंज देने का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। प्लस क्या है कि बैंक जो बार बार हम लोग जाते थे, अब वो सारी चीज की समस्याएं दूर हो गई।
0: जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात PM के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को उत्साहपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री के संदेश से छात्राओं और खिलाड़ियों में खेल के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला।
3: जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमें ये बताया कि जिस तरीके से हम खेल में अगर हम रुचि देंगे तो उसके साथ साथ हमें नशा मुक्त होने का भी एक विजन मिलेगा। इस विजन से हम ये समझते हैं कि खेल ना ही सिर्फ हमें फिजिकली बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के अवार्ड लेकर जाता है, प्लस हमें नशा मुक्त होने का एक अच्छा एनकरेजमेंट दे रहा है, एक विजन दे रहा है।
4: आज का ये सेमिनार अटेंड करके बहुत कुछ सीखने को मिला और मोटिवेशन भी मिला कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है और मैं खेलती भी हूँ, बट एज अ जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन आए थे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वैसा मुझे कभी मौका नहीं मिला। बट मैं जरूर इनकरेज करूंगी सबको आगे कि वो इस फील्ड में आए और देश के लिए अपने समाज के लिए योगदान दें।
0: जमशेदपुर में आकाशवाणी केंद्र का 37वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी क्लब की ओर से जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और सभी ने आकाशवाणी से जुड़े अपने अनुभव और पुरानी यादें साझा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय ने कहा कि आकाशवाणी जमशेदपुर के 37 वर्षों के सफर में वर्तमान कर्मचारियों के साथ पूर्व कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
5: स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि हमने यहाँ जो अपने सेवानिवृत्त साथी थे उनको भी आज हमने आग्रह किया कि आप भी आएं और हमसे अपना विचार साझा करें। जो स्थानीय थे या जो झारखंड के आसपास के, और बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे जो सेवानिवृत्त साथी है वो ईचागढ़ प्रखंड से, मूटी से, रांची से तक से आए। हम लोगों ने आपस में अपने विचार को साझा किया।
0: जैसे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रही है, जमशेदपुर में पूजा का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न पूजा स्थलों पर पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कहीं पारंपरिक शैली तो कहीं आकर्षक और भव्य थीम पर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
6: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:17 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी पसंद में। श्रोताओं, आज मेरे हाथ में है आप सभी श्रोताओं के द्वारा लिखे गए बहुत सारे खत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे किन किन श्रोताओं ने अपनी फरमाइश खत के माध्यम से हमें भेजी है। तो कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत हमें मिला है सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से, और हमें खत लिखा है योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक ने। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र के इल्ज़ियार अब्राहम, उज्जैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफर्ट, अविनाश क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ गोंडाने, हीरावन सेंडे और उनके साथियों की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमें खत लिखा है गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया ने। बटिंडा रोड डबावली से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है और हमें खत लिखा है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम पोंडा काटा से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सोरेन, सुहानी देवी, संजय सोरेन, पातोर बांकीरा, डोली बांकीरा और रघुनाथ चरहट। इचलकरण जी महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हम तक भेजी बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म शिवाय से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार मिथुन ने, बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन संगीतकार मिथुन की। तो और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है कुचाई तोडांगी दो से मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सूरजमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र महतो, बोरखेड़ा विप्रमाल जिला उज्जैन के विनोद मूनत, कुमारी नेहा जैन, दीपक महक मूनत, चेतन नाहटा और परी मूनत की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। फिल्म शिवाय के इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांव चांदपुर पोटका से, और हमें खत लिखा है संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल गांधी भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू और बसंत कुमार भगत ने। कॉलेज रोड घाटशिला से इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, सानंद ने, और मुसाबनी के कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णव राज की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। रेलवे रोड गंजू डवरा के मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, गौतम, एम्स फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी की फरमाइश भी फिल्म सिवाय के इसी गीत के लिए मिली। लालपुर मारो से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश विनय ध्रुव, निमी पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव। रेलवे कॉलोनी बटिंडा पंजाब के जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोगों ने अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। चिंता रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंद्राठाड़ी मधुबनी बिहार के सोभिकांत झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एस के सज्जन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनना चाहा है बागपत यूपी से एहसान अली ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म दरखास्त से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म शिवाय से। आवाज़ थी गायक कलाकार मिथुन की। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म सोनू के टिट्टू की स्वीटी से। इस गीत को आवाज़ दी है गायक कलाकार अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं कुमार ने और धुन है रोचक कोहली की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं महुलडिया सोनवास झारखंड से, नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अन्नु, तन्नु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो और बड़ा बाम्बो जोड़ीहा से मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो। बड़ी बाजार चायबासा से हमें इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजी है मुअज्जम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा ने। डुंगरी चायबासा के आरके पाठक, अनीता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। सद्भावना रेडियो श्रोता संघ PMCT बनारस UP से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित और पुलकित। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। पुणे से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं पंकज बाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, VT बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे। मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ के पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू सिंह, रीतू सिंह और ऋषभ सिंह ने भी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोटडा बहादुर जिला मंदसौर से नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और VK डांगी। बड़का खाना से अफजाल ताज और साहिल सुल्ताना, मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर ने भी अपनी फरमाइश समय इसी गीत के लिए भेजी। मलोट कैंप पंजाब के सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटे, किशन, लखविंदर संधु, महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर ने भी अपनी फरमाइश समय भेजी है। ग्राम धुराबांधा भाटापाड़ा से हमें खत लिखा है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से और हमें खत लिखा है नायडू महतो, ओषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोदरा, अर्जुन बोदरा और रवि बोदरा ने। बड़विल ओडिशा से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जैमिनी और जयंती ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है बेरेडी से और हमें खत लिखा है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने। राम भट्टा संजय मैदान रोड रायगढ़ से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के श्रीमती वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। बदलापुर मुंबई से हमें खत लिखा है सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर ने। ग्राम नवागांव मुढ़ईपार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के सोहन साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तजेश्वर टाकेश्वर कुसाल और तुलेश साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम बनबघेरा राजनांदगांव के योगेश सारवा, श्रीमती आशा सारवा, नीरज नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें भेजी है दौलतबाद मुरादाबाद से और हमें खत लिखा है जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अबासी ने। ग्राम हतंग तोडांग टोला महली साई के बीरबल महली, सरस्वती महली, फुलवंती महली, शकुंतला महली, सुमांती महली और यशोदा महली की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से ये गीत गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल के स्वर में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोट रोड बागपत से यूसुफ आज़ाद वसीला, साहिल आज़ाद और अंजुम नाज। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। लुधियाना पंजाब के अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिपा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फ़कीर, डब्लूउल्ला फ़कीर और परवीन आसमा फ़कीर ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। बुलंदशहर से इसी गीत को सुनना चाहा है वद्रुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी और फर्जी वली अंसारी ने। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर की फरमाइश भी फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के लिए हमें मिली है। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। बिलासपुर देवरी खुर्द के संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। पटेल नगर मलोट पंजाब से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। छत्रपति संभाजी नगर से हमें खत लिखा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। आमकोंडरा रिंगाखार के राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रप्रिया दक्षप्रिया नेताम की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। न्यू कॉलोनी टूंगरी तसर फॉर्म रोड चायबासा के रश्मिता राउत, मधुस्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी की फरमाइश भी हमें फिल्म दिल है कि मानता नहीं कि इस गीत के लिए मिली। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत खास खास और ख़ास आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम आपकी पसंद में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है सरायकेला पाड़ापुर दिशावली ग्राम पहाड़पुर से। और हमें खत लिखा है शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरामनी मुंडरी, हीरामनी मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरू मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धिबू, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से अगली फरमाइश हमें मिली है हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक और मेका बिरक की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अर्शद तड़वी, आरिस अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर के मुसर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। लक्षनपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जीवन लाल रजक, सरोजनी रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ के शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू और नीलिमा साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तुरी टोला चायपासा के मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है यमुनानगर हरियाणा से और हमें खत लिखा है जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान ने। चितलवाड़ी अकोला के अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और समस्त इंगले परिवार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, जिसे आवाजें दी है गायक कलाकार अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी ने। बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है नदीम श्रवण की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान के हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागड़ी, गांव कैरो के कुर्दर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गोशब्द की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम सौगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें भेजी है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से और हमें खत लिखा है नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। आमला टोला चायबासा से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। कनेरा मोहल्ला पटियाला के बत्ता परिवार से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। ग्राम हंडीरा से इसी गीत को सुनना चाहा है मानताराम सिंह कुंटिया ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजा है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि दीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंसुरितिका, नीरज रिचा, चित्रंजन उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस गीत के लिए मिली है। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिखें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा। चाईबासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ श्रोताओं अपना पूरा नाम और पता हमें अवश्य ही साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजें। एक और बात श्रोताओं, यदि इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव या शिकायत आपके पास हो तो आप वो भी हमें अवश्य लिख भेजें। हम ऐसा नहीं कहते कि आप हमारी प्रशंसा लिखिए, बल्कि आपको अगर हमसे कोई शिकायत है तो भी आप हमें अवश्य लिखें। हम आपकी उम्मीदों पे पूरी कोशिश करेंगे खरे उतरने की, और आपके द्वारा लिखे हुए खत श्रोताओं हमें प्रेरणा देते हैं कि हम हर दिन आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो इन सभी बातों के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें। नमस्कार।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 8 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी खतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है सदर प्रखंड चायबासा के बरकुंडिया से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मीना बिडोली, सुंदरलाल बिडोली, गुलशन बिडोली, लाल मार्शल बिडोली, चांदमणि देवगम, सस्मिता बिरवा और नील मार्शल बिडोली। अपनी फरमाइश हम तक भेजी तरल मार्शल बिडोली ने भी। और कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें भेजा है मेन रोड सोनवा झारखंड से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक।

नागपाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नीकपाणी प्रधान ने जरूर वरुण महाराष्ट्र से अपनी फरमाई सब तक भेजी। बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज ने ग्राम बठेना पाटन से हमें खत लिखा है। बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली, शिवम और चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। कस्बा बराड़ा अम्बाला से हमें खत लिखा है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, गुरशब्द और राहुल ने। अनारकली बाजार जगराओं से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश हमें भेजी यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म आदमी से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सन्नी मधुर। बरेली कैंट रेलवे केविन के पास चनहटी बरेली से हमें खत लिखा है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। बड़ा बाम्बू गोपालपुर से इसी गीत को सुनना चाहा संतोषी महतो और जय कुमार महतो ने। डबावली हरियाणा के जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया की फरमाइश भी हमें फिल्म आदमी के इसी गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से सरफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नाज अंसारी ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। चमन पार्क दिल्ली से इसी गीत को सुनना चाहा सोनम और आदिबा ने और सारिमपुर बक्सर से राज एसटी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। अलीका डबावली से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म आदमी से।

फिल्म आदमी से अभी आपने गीत सुना। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म मशाल से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताते, राकेश ताते, निशा कुमारी, प्रकाश ताते, ललित प्रधान और देवेंद्र जी, ग्राम गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। भाटापाड़ा से सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेंद्र लहरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चे टोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कालका से सुपचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम हारूडी चांडिल से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो। कुचाई ग्राम ईचाहातु के गोलाराम लुवादा, लूदरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनि, बिंजना और लुवादा परिवार के सभी लोगों की फरमाइश फिल्म मसाल का ये गीत है। ग्राम लोसुधिकी से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कोमल महतो, पेमी गोविंद और जीतू साइमन। बड़ा निमड़ी चायबासा के तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी आमजोड़ा मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता, लिपि और दीपाली गोप ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से और हमें खत लिखा है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया सोईब खान, पुस्तवा खान, राउफ भाई और शहीद भाई ने। गांधीबाग अकोला के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। डोंगरगांव राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। सनी इनक्लैब मोहाली से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरेंगी से, और हमें खत लिखा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा ने। बोरसरा नैला से अपनी फरमाइश हमें भेजी प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू ने। सिमधर पार्क विरमगाम गुजरात के अजित प्रमिला भाविस, तनी भावसार, हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। गांव के ता सराय किला से हमें खत लिखा है राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित, अभिषेक, आशीष, सुमित, अनामिका, सुनीता, गीता, रीता गोप, सुलेखा गोप, आराध्या गोप, माहिर गोप, खुशी गोप और राहुल गोप ने। अमरावती महाराष्ट्र जामठी वरोड से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मुकेश दिनकल कासलेकर, विमल विशाखा कासलेकर, मझगांव के अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मज़र हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला, आजम भाई, विरंची गोप और सबा अहमद की फरमाइश भी हमें मिली है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से अपनी फरमाइश हम तक भेजे विनोदपुरी, विपिन रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म मेरे हमसफर से, और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं खरसवा गांव दलाई केला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनीमाई सोए। किशनगंज बिहार के रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए हमें भेजी देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुसार और प्रभा देवी तामोरिया ने। बंसाई चायपासा के परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, अमृता कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत और सोनाली खंडायत ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी के शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, एसबाग पीली कॉलोनी लखनऊ के मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। गांधी चौक राजनगर कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन की फरमाइश भी हमें फिल्म मेरे हम सफ़र के इसी गीत के लिए मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मेरे हम सफ़र से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के गुलजारों में फिल्म मेरी जंग से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, भगत, यीशु और तासु। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर के प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम ने। बेरड़ी से अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए हमें भेजी हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार ने। नांगलोई दिल्ली के मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ से हमें इसी गीत के लिए खत लिखा है जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फूलजी यादव और यादव परिवार के सभी लोगों ने। कुशाई बिदरी गांव के पी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल सोए, मुन्ना सोए और सनी सोए की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम सुराबेड़ा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बिरू सरदार। ग्राम पैजनिया, तहसील को जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के सतेंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक आराध्या चंसौलिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। मॉडल टाउन पानीपत से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आनिया, अनाया, नेहा सागर गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी और सुधीर नूतन। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी के अकरम हुसैन, इसरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, आबिया नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैक और चीना सैक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। कोकिलवाड़ा उड़ाई मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल सैक और नुजत जहां नाज ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडावा ग्राम लोहारी के राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे की फरमाइश भी हमें मिली। खुर्दी रोड मानपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म मेरी जंग से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म रामलखन से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। गांव चौहलदा बागपत के संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल की फरमाइश भी फिल्म रामलखन के इस गीत के लिए हमें मिली है। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं टावर चौक गुमला से एसएम जावेद, सगुता अंजुम और जेनिस जहरी। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आदर्श नगर मलोट से, और हमें खत लिखा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। पीपरपारा, पालचुआ, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। खरसावा पतिसाई से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनवा गाँव पोड़ाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है मयंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटई से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा और दामिनी वर्मा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने भी अपनी फरमाइश हमें फिल्म रामलखन के इस गीत के लिए भेजी है। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें मिला है शास्त्री नगर बीड शहर से, और हमें खत लिखा है किशन सपकाल और आशा सपकाल ने। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और परवणी से सी आर कुलकर्णी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांस ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। छोटा निमड़ी चायपासा के बाबू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार का की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बलराम गेट कासगंज से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं एम असलम सैफी, जुबैनिशा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी और आफात खां। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म रामलखन से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म राम लखन के इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता थे ग्राम बादोड़ी से नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति कुदादा, विक्की और पुरानी टोली जसपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश समय भेजी थी मालती नागदेव।

कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अन्मेश नागदेव और मास्टर अंसल नागदेव ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने भी अपनी फरमाई समय इसी गीत के लिए भेजी। दुबिहा निवादा गाजीपुर से इसी गीत को सुनना चाह प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने शेरपुर कलाम से गाय। अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली थी। मोका भाटापाड़ा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता थे भिवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू। ग्राम फ्रांसी से अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए हमें भेजी थी राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी और प्रमोद कुमार डूडी ने। हाँसी शहर के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंडी बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली थी। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली थी। और इन सभी फरमाइशी खतों के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: आपके साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्धा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। इशू के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह बैठकों में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS country as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
8: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
9: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीक सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
12: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
13: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
14: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और एनसीएस के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के

फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की अजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की पांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskEIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. In an all-Indian semi-final, the armless archer from Jammu defeated Sarita to book her place in the gold medal clash. She will now face Aizada Saidan of Kazakhstan in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees. Prime Minister Modi to unveil projects worth over 35,000 crore rupees in Gujarat tomorrow to inaugurate Global FinTech Fest in Mumbai. Home Minister Amit Shah says zonal councils have become instrumental for development and public welfare. Also presents President's Police Colour to Goa Police. LPG diesel booking interval of 25 days to be same for urban and rural areas. 5 MPD officials suspended in Satyaniketan building collapse incident. Delhi High Court orders high-level MPD inquiry. Election Commission announces by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam on 6th of October. Assembly by-polls for 2 seats each in Tamil Nadu and West Bengal and 1 in Puducherry to also take place simultaneously. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters women's compound individual final in Ahmedabad, assuring a medal for India. That's all in news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिल तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। एलपीजी का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाके में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आला सतह की एमसीडी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागाओं लोकसभा सीट का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों, नीज पुडुचेरी में 1 सीट का जिमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। और अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इंफरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। अब खबरें तफसील से। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इन तजवीजों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टो लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद की तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइन की डिजाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। उधर भारतीय फजाइय के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निज़ाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई पॉलिसी रद्द अमल में कार्रवाई करने वाली से आगे बढ़कर पेशबंदी की कार्रवाई करने वाली पॉलिसी बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद कफील और पुरएतमाद बनकर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिसाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और ये वजीर आजम की सरगर्म सिफारतकारी और उनकी नजरिया साज क्यादत का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करते हुए वजीर दिफा ने कहा

0: कि ब्रह्मोस मिसाइल के मौसर होने की सलाहियत सामने आ चुकी है।
1: भारत 2016 से पहले एमटीसीआर मेंबर नहीं था, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज एक सीमा से आगे चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सक्रिय डिप्लोमेसी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हमारा एमटीसीआर के हम सदस्य बने और उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाने का काम करने में हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 3 अहम सेक्शनों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर का अहाता करते हैं। आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामानिगारों को जानकारी देते हुए रेलवे के वर्कजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि बारबरदारी के लिए मखसूस मशरकी और मगरबी कॉरिडोर मुल्क के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे के लिए एक अहम वसीले के तौर पर काम करेंगे।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर तकरीब से खिताब करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरवकार सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसों में से एक GFF 2026 का मौजूद है सलाहियत से असर पजीरी तक। इस बारे में जारी की गई सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक GFF 2026 का मकसद डिजिटल अदायगियों और मालियाती शमूलियत में भारत की क्यादत को परवान चढ़ाना और सलाहियत से असर पजीरी तक ले जाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गोवा के पनजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अब मगरबी खित्ते की रियासतों के माबेन किसी तरह का कोई तनाजा नहीं रह गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोनल काउंसिलें तनाजात के तस्वीर के फोरम से आगे बढ़कर अब अवामी बहबूद की स्कीमों पर अमल दरामद की निगरानी के प्लेटफॉर्म बन गई हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि आज की मीटिंग में जिन मामलों पर तबादला ख्याल किया गया वो सभी निगरानी से मुतालिक थे। उन्होंने कहा कि जोनल काउंसिल में दरियाओं के मामले पर रियासतों के दरमियान कई तनाज़ात भी हल कर लिए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब के दौरान गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुरवकार पुलिस परचम पेश किया। जनाब अमित शाह ने शहरियों और सयाहों को फौरी इमदाद फराहम करने की खातिर 12 जबानों में साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 के लिए AI पर मबनी वॉइस असिस्टेंट का भी आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने गोवा पुलिस की खिदमात, पेशा वाराना सलाहियत, दिलेरी और डिसिप्लिन के लिए उसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि फोर्स ने दाखिली सलामती बरकरार रखने, साहली इलाकों के तहफ़ और गोवा की सियाहत और मईशत को महफूज रखने में अहम रोल अदा किया है।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने आज कहा कि मरकज ने सभी तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो LPG रिफिलिंग बुकिंग के लिए 25 दिनों के नजरसानी शुदा वक्फे को शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसां तौर पर फौरी नाफिज करें। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोपी ने कहा कि LPG सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और रिफिल बैकलॉग में नुमाया कमी आई है। वहीं मरकज ने इस बारे में आयत पाबंदी में नरमी की है। उन्होंने कहा कि शहरी और देही जुमरे से कतए नज़र अब सभी घरेलू LPG सारिफीन 25 दिन के वक्फे के बाद ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मशरिक़ी वस्ता में जंग की वजह से LPG सप्लाई पर दबाव के सबब शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का वक्फा 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि कल दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत के मुबैना मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आला ने कहा कि पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को फौरी तौर पर सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान दिल्ली की सत्य निकेतन इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। कुदरती आफात से निमटने की कौमी फोर्स NDRF की जानिब से जाए हादसे पर तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS ने इत्तला दी है कि मजमूई तौर पर 12 मुतासरीन को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी थी, जबकि एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर बाद में चल बसा। AIIMS ने मजीद कहा कि बचाए गए 3 अफराद की हालत नाजुक है, जबकि 2 लोगों की हालत मुस्तहकम है। वहीं एक शख्स को डिस्चार्ज दे दिया गया है। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD को हिदायत दी है कि कौमी राजधानी में सत्य निकेतन के मकाम पर एक इमारत के ढह जाने के वाकये की आला तरीन एग्जीक्यूटिव सतह पर इंक्वायरी कराई जाए और इस बात की भी जांच की जाए कि आया ये इमारत तामीर के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं। इस वाकये का संगीन नोटिस देते हुए हाईकोर्ट ने MCD को यह हिदायत भी दी कि वो अपने दायरे इख्तियार के तहत आने वाली सभी पेइंग गेस्ट इमारतों और हॉस्टल्स का 1 हफ्ते के अंदर अंदर जामे ऑडिट कराए। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इमारत गिरने के वाकये की इंक्वायरी में इस बात की खास तौर पर जांच की जानी चाहिए कि आया हर तरह की मतलूबा इजाजत हासिल कर ली गई थी या नहीं। किसी तरह की गफलत या नाकामी के लिए जिम्मेदार अहलकारों की निशानदेही की जाए और कसूरवार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुजवजा या अब तक की गई कार्रवाई की तफसील पेश की जाए। इंतखाबी कमीशन ने आसाम की नागांव लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की 2-2 असेंबली सीटों और पुडुचेरी की 1 सीट के लिए ज़िमनी असेंबली इंतखाब का भी ऐलान किया है। कमीशन ने कहा कि तमिलनाडु की मदुरन तकम और धर्मपुरम सीटों, मगरबी बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थत्ता चंदावड़ी असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात दोनों के लिए नोटिफिकेशन बुध के रोज जारी किया जाएगा। 16 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। राय दही 6 अक्टूबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती अगले महीने की 9 तारीख को होगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इन इत्तलात को गलत करार दिया है कि इसरो की निजकारी की जा रही है। आज बेंगलुरु में CII के जेर एहतमाम एक नुमाइश के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए इसरो के सरबराह ने कहा कि इसरो एक सरकारी इदारा है और इसे प्राइवेट हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। अलबत्त उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जानिब से दी गई मंजूरी और खला से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर खला के प्रोग्राम में शामिल है, जिसका मकसद इसकी सरगर्मियों में तेजी लाना है। इसरो के महदूद रोल और बजट से मुतालिक इल्जाम पर चेयरमैन मौसूफ ने यह वाजे कर दिया कि इसरो का रोल कई गुना बढ़ गया है और इसकी मांगे पूरी करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तस की गई रकूमात काफी हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। कई मकामात पर गंगा और दीगर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे रियासत के वसी इलाके मुतासिर हुए हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। 13 जिलों के 77 ब्लॉकों में 438 पंचायतों के दायरे में आने वाले लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस दौरान भारतीय मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शुमाल मशरक हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। इस दौरान अंडमान निकोबार, जजायर, बिहार, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला और माहे में कल मौसम के गर्म और मरतूब रहने की भी पेशगोई की है। पैरा तीरंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इनफरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना लिया है। और इंडिया सेमीफाइनल में बाजुओं से महरूम जम्मू की शीतल देवी ने सरिता को 143 के मुकाबले 145 से शिकस्त दी और सोने के तमगे के लिए होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुंच गईं। फाइनल में शीतल देवी का मुकाबला कजाकिस्तान की आयजदा सैदान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिलें तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। एलपीजी का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसां रहेगा। कौमी राजधानी में सत्य निकेतन इमारत ढह जाने के वाक्य में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आला सतह की एमसीडी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों नीज पुडुचेरी में 1 सीट का जिमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरतनाज और आज का हमारा विषय है लोक अदालत यानी जनता की अदालत। हम सब जानते हैं कि हमारी सामान्य अदालतों में एक छोटे से केस को भी सुलझने में कई साल लग जाते हैं। सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगा वकील कर सके, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने हमें लोक अदालत का तोहफा दिया और आज पूरे आधे घंटे हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, कैसे ये काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार आशीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
0: जी श्रोताओं, और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करना शुरू कीजिए। नंबर है 0112311 0411 0112317117 0112317116 और 0112311 4444 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है।
1: देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, वो सबके लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से संविधान में त्वरित न्याय की भी बात करी गई है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जब हम एक वास्तविकता के साथ सामने रखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में आप पाएंगे कि मामले बहुत समय तक लंबित हो जाते हैं, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, लोगों को कई बार आप पाते हैं कि प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, और सालों साल, जैसे कि एक पॉपुलर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से कि किस तरीके से हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को प्रैक्टिकली जमीन पर उतार पाए। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास रहा है, हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 87 में लाए, उसके तहत मल्टी टीयर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये अथॉरिटीज समय समय पर उन फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती रहती हैं जिन फोरम्स में कोर्ट में चल रहे केसेस या जो केसेस कोर्ट में ले जाए जाने वाले हैं उन केसेस को रेफर कर सकते हैं
0: जी।
1: ये फोरम्स आपस में दोनों पार्टीज को बिठाकर एक तरीके से कॉन्सिलिएशन का काम करती हैं और आपस में ही एक सुलह समझौते के आधार पर अपना अवार्ड पास करती हैं। तो एक तरीके से जिसको हम ADR सिस्टम कहते हैं, एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, इसकी तरफ प्रयास किया गया है लोक अदालतों के द्वारा। जी
0: जी, और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा हिसार से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, और वकील साहब भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार राजेंद्र जी,
2: मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से कि लोक अदालत में कौन से केसों की सुनवाई होती है और दूसरा कौन से केस की नहीं होती। आम आदमी कैसे पता करे कि कहाँ लोक अदालत लगती हैं और इसके बारे में कब कब सूचना दी जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
1: नमस्कार। देखिए, मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, कब कब लोक अदालतें लगती हैं और कहाँ कहाँ लोक अदालतें लगती हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एनुअल कैलेंडर जारी करती है जिसमें कि कब कब लोक अदालतें लगनी हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड कैलेंडर होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि कहाँ लगती हैं। न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, तालुका स्तर पर, मंडल स्तर पर, हर जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और वो लोक अदालतें सामान्यतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर बना होता है उसके अनुसार काम करती हैं और कभी कभी स्पेशल लोक अदालत भी लगती हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के केसेस इसमें डील किए जा सकते हैं और किस तरीके के नहीं डील किए जा सकते हैं। देखिए, जो भी सिविल केसेस होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस लोक अदालतों में रेफर किए जा सकते हैं, वहां पर ले जाए जा सकते हैं। और वो क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे आपका चेक बाउंस का केस हो गया, या ऐसे कंपाउंडेबल केसेस जिसके लिए लॉ में प्रोविजन है, वो सारे केसेस लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। लेकिन जहां पर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जैसे अगर कोई रेप का केस हुआ है, एक मर्डर हुआ है, इस तरीके के केसेस में चूंकि स्टेट भी अपने आप में एक पार्टी होती है, ये क्राइम्स न केवल विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ भी एक क्राइम होता है, इस तरीके के केसेस को लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जो आपके पारिवारिक झगड़े होते हैं, जो आपके समाज में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी यूटिलिटी निकल कर आई है लोक अदालतों की, आपका गाड़ियों का चालान हो जाता है, आपके बिजली बिल कभी ज्यादा आ जाते हैं या पानी का बिल ज्यादा आ जाता है, इस तरीके के सारे मुकदमों की सुनवाई आप पाते हैं लोक अदालतों में होती है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हम पाते हैं कि पिछले करीब 5 सालों में करोड़ों केसेस ऐसे हुए हैं, छोटे छोटे केसेस, जिनको की लोक अदालतों के द्वारा आपसी सुलह समझौते से कम्प्लीट किया जा सकता है। जी
0: आशीष जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार, विश्व को मेरा भी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार राकेश जी।
3: जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोक अदालत में जो है केस बनते हैं तो कितने दिन, कितना टाइम हमारे को उसमें लग सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
1: देखिए, लोक अदालत एक दिन विशेष के लिए तय की जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर आपका मैटर मार्क होता है। लेकिन लोक अदालत की चूंकि प्रक्रिया इस तरीके की होती है कि कॉन्सिलिएशन पहले जरूरी होता है, तो जब भी आपका केस लोक अदालत के लिए या आप खुद ही अप्लीकेशन के थ्रू रेफर कराते हैं, या कोर्ट को भी लगता है जिस कोर्ट पे पेंडिंग है कि ये एक सुटेबल केस हो सकता है लोक अदालत के लिए, इसको भेजा जाना चाहिए, तो उसके पहले एक कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस, दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बात करके कोई एक ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज को मंजूर है, जब वो चीज हो जाती है तो उसके बाद आप पाते हैं कि ये केवल एक दिन ही समाप्त हो जाता है, किसी एक दिन विशेष के लिए लोक अदालत लगती है। और अगर पार्टीज ने अपना समझौता कर लिया है तब तक, तो वहां पर लोक अदालत अवार्ड पास कर देती है और वो अवार्ड एक डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। जी
0: जी, हम लोग केसेस की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
1: जी देखिए, केसेस को अप्लाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट केसेस में भी मैं कैटेगराइज करूंगा कि एक तरीके का केस होता है जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और कोर्ट में चल रहा है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो ऐसे मामले हैं जहां पर कोई पार्टी कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रही है, वो कंसर्न कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, लीगल सर्विसेज कमेटी के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है, और उस एप्लीकेशन के बाद दोनों पार्टीज को नोटिस चली जाती है कि ये आपका कोर्ट, आपका केस इस पर्टिकुलर मीडिएशन के लिए या लोक अदालत के लिए प्रेफर किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर या दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट इस चीज के लिए दे सकती हैं कोर्ट को, या एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगता है कि ये एक सही मामला हो सकता है जहां पर लोक अदालत के थ्रू कोई निर्णय निकल सकता है, या फिर अगर दोनों पार्टीज की भी कंसेंट नहीं है फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज एक्सप्लोर कर सकती हैं और कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं सुलह समझौता, तो कोर्ट सुओ मोटो भी मैटर को लोक अदालत को रेफर कर सकती है।
0: जी आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा बिहार से, मोहन पासवान जी। जी मोहन
4: जी। जी जय हिंद मैडम इकट्ठे।
0: जी जय हिंद।
1: जय हिंद मोहन जी।
4: जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोक अदालत में आम लोगों के लिए सरकारी वकील का भी व्यवस्था होता है सहायता के लिए?
1: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं इनके ट्विन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, मूलतः उसका एक आर्थिक कारण भी होता है, और कई वर्गों के लिए हमारे समाज में लीगल एड की अलग से भी प्रोविजन है। ऐसे में सरकारी वकील, जिसको कि हम सरकारी वकील कहते हैं, वो बेसिकली एक लीगल एड काउंसिल होता है जो कि इम्पैनल्ड होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से, और वो वकील आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से मार्क किया जाता है। और मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से सबसे अनुरोध, देखिए किसी भी जब सुलह समझौते से कोई निर्णय निकलता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो सुलह कर रहा है उसको अपने लीगल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उसको अपने केस की मेरिट पता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसका केस कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है, तो वो कभी भी सुलह समझौते की टेबल पर एक मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, एक अच्छा कानूनी जानकार होना उस सलाह के लिए, लोक अदालत में पार्टिसिपेशन के लिए, ये आवश्यक है। और अगर आपके पास ऐसा वकील नहीं है तो आप निसंदेह, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं और लीगल एड काउंसिल्स आपकी मदद करने के लिए वहां आपको जरूर मार्क किए जाएंगे।
0: आशीष जी, आइए आप एक और प्रश्न ले लेते हैं थाने से गुरुनाथ जी का। जी गुरुनाथ जी,
5: नमस्कार।
0: नमस्कार,
5: मेरा क्वेश्चन था लैंड के बारे में था, जमीन का विवाद है मेरा, मेरा परिवार के अंदर जो है वो, तो उसमें मतलब लोक अदालत में जाने के लिए क्या हम सामने वालों को भी मतलब पार्टी करना पड़ेगा कि हम खुद जाके अपील कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, इसे कैसे पता चले कब लोग अदालत लगती है, कोर्ट में जाए उनसे पता चले, यही पूछना था।
1: जी देखिए, आपके दूसरे सवाल का पहला मैं पहले उत्तर दे देता हूँ। जो भी कंसर्न कोर्ट है आपकी, जो भी ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट होगी, आप वहाँ पर जाएंगे तो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, लीगल सर्विसेज कमेटी का एक ऑफिस वहाँ हर कोर्ट में होता है। वो उस कोर्ट में जो नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार कब लोक अदालत आ रही है या कोई स्पेशल लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, इस चीज को आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बोली कि आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए क्या आपको दूसरी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगर आप लोक अदालत में मामला ले जाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी भी एग्री करती है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज अगली डेट पर कोर्ट के सामने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर अगली पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही है, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो भी आप अपने वकील से कहकर एक एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं या ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं। और कोर्ट को यदि लगता है कि इसमें एक सुलह समझौते की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है तो वो मैटर लोक अदालत को रेफर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आपको जो इसका लाभ मिलेगा कि अगर ये मैटर लोक अदालत में सेटल होता है तो एक जो बहुत प्रॉपर्टी का मैटर है, सालों साल खिंचते हैं इस देश में, तो उसमें आपको जल्दी उस पर त्वरित रिलीफ मिल सकती है जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी की साथ में साथ जो आपने कोर्ट फी फाइल करी होगी अपने केस को फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट फी भी आपको, अगर मामला लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो कोर्ट फी भी आपको वापस हो

0: जाएगी। जी
1: आशीष, लेकिन अगर एक पक्ष सपोज कीजिए फैसले से खुश नहीं होता है तो क्या वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं?
0: देखिए ये कंफ्यूजन काफी लोगों को रहता है
1: जी।
0: लेकिन लोक अदालत का अगर आप नेचर देखेंगे, वहाँ जो वार्ड्स का नेचर होता है वो कंसेंट से होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज टेबल पर साथ में बैठी, उन्होंने अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कोई एक ऐसे ऑप्शन पर पहुंचे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक सहमति का पॉइंट बिंदु बन सकता है। अब अगर दोनों पार्टीज किसी मामले को सेटल करती हैं और उस चीज को लेकर सहमत हैं तो कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो लोक अदालत के जो अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और ये अपीलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही, जब मैं कहता हूँ कि अपीलेबल नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब है, केवल इतना मतलब समझिए कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहुत छोटी सी फाइन डिस्टिंक्शन ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू अगर लोक अदालत में भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे परमानेंट लोक अदालत होती है वहां पर पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन एक होता है, अगर लोक अदालत ने ही अपना ज्यूरिडिक्शन को ब्रीच किया हुआ है या जो अवार्ड आया है वहां उसमें धोखाधड़ी करके अवार्ड आया है, जैसे एक पार्टी बैठी हुई उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया या एक क्लेम किया जो कि सही नहीं है, गलत है, और इस तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड को हासिल किया है तो वो जो सहमति होती है वो मानते हैं कंसेंट आपकी विशिएटेड है और विशिएटेड कंसेंट के आधार पर जो एग्रीमेंट और जो फाइनली लोक अदालत में अवार्ड में कन्वर्ट हो रहा है उसको रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होता है। लोक अदालत के अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
1: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से धर्मवीर जी का। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर
2: सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर कोई 33 साल पहले अगर कोई अपराध करके भाग जाता है और उसके साथी पे मुकदमा चलता है, केस चलता है और एक्सपायर हो जाता है, जो भागा हुआ मेन अपराधी है उसकी खोज खबर निकालने के लिए हमें उसका क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा? दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल दहेज के मामले चलते हैं, जो शादी तो नई नई शादियों के बाद तलाक होने की नौबत आती है, तो ये बहुत अच्छा कानून में थोड़ा सा शुरुआत कर दी है कि मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत खतरनाक केस माने जाते थे, दहेज मामले में पूरा परिवार अंदर हो जाता था। ये बहुत अच्छा सरकार कानून ने अच्छा किया कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीक की जो देख के कुछ काफी तक दोनों पार्टियों को, लड़के वालों को ज्यादातर सुविधा मिली है।
0: जी दोनों सवालों के आप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो आपका पहला सवाल है कि कोई अगर अपराध करके भागा हुआ है और उसका वो उसकी डेथ हो गई है और उसका साथी, मैं मानता हूँ साथी से आपका मतलब को एक्यूज से है, उसको कैसे ढूंढा जाए? तो देखिए ये लोक अदालत में मैटर आएगा या नहीं आएगा इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था या नहीं था। एक अपराध ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल गबन किया हो, आपने आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या आपको लेट से एक छोटी मोटी चोट लगी हो जिसको भी कंपाउंडेबल एक हो सकता है न्यायिक प्रणाली को देखते हुए। इस तरीके के मामलों में तो आप लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध घटित हुआ है, ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिसको जो कंपाउंड नहीं हो सकता, जो पार्टीज आपस में सेटल नहीं कर सकती हैं, उस अपराध के लिए लोक अदालत सही फोरम नहीं है और उसके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं देश की वही अप्रोप्रिएट फोरम होती हैं। और जब कोई भी एक्यूज्ड अगर नहीं मिल रहा है और काफी समय से एब्सकॉन्डिंग है तो पहला एक स्टेप होता है उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक डिक्लेयर कराया जाता है और उसके बाद आप अपने काउंसिल से सलाह लेंगे। तो लॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर देखिए इस चीज की गारंटी तो नहीं होती है कि जो भागा हुआ है वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गारंटी इस चीज की होती है कि जो अथॉरिटीज हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक्शन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। उन अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जिनका कि सहारा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका दहेज उत्पीड़न से, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिएशन इस समय देश में काफी चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। लोक अदालत और मीडिएशन में अगर आप बेसिक अंतर समझना चाहें तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो अपने आप में कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है और वो इन्फोर्सिबल होता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन में एक मीडिएटर पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और जब अगर पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं, कोई समझौता हो जाता है तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है, कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह एक खुला एक मंच होती है जिसमें कि जो भी वहां पर मौजूद है वो उन चीजों को फैक्ट के बारे में जान सकता है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहां पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है, और उन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, उन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है। अब जहां भी कंपाउंडेबिलिटी की बात आती है, फिर लोक अदालत अपने आप में एक सही फोरम बन जाती है। अगर सपोज करिए, देखिए, एक ट्रिनिटी ऑफ केसेस की बात होती है लीगल फ्रेटर्निटी में, कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, एक डिवोर्स का केस चल रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा होता है, और दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा होता है, ये तीन केसेस आपस में मिलके चल रहे होते हैं, तो कई बार पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोक अदालतों में जाएं या मीडिएशन में जाएं। मीडिएशन भी कई तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट मीडिएशन भी हो सकता है जो कि गांव समाज के लोग ही आपस में फैमिली मेंबर्स मिलकर बैठकर पार्टीज को समझा सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और वो फिर सिविल कोर्ट में चला जाता है। दूसरी तरह से कोर्ट एनेक्स मीडिएशन होता है, जहां पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहां पर आप पाएंगे आजकल हर एक मैट्रिमोनियल केस को सबसे पहले मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे मामले जहां पर कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है या गलत इस्तेमाल हुआ है, और वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की पॉसिबिलिटी कानून के द्वारा दी गई है, वहां पर मीडिएशन को या लोक अदालतों के की फोरम को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जी धर्मपाल जी।
1: आशीष जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से श्रीपद झाकड़े जी। जी श्रीपद जी। जी नमस्कार।
3: नमस्कार मैडम। नमस्कार सर।
0: नमस्कार श्रीपद जी।
3: हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं क्या
1: श्रीपद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपने पीछे रेडियो ऑन किया हुआ है या टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज।
3: अभी आ रही है? हेलो।
1: हाँ बताइए।
3: हाँ, मैं दृष्टि बाधित हूँ, मतलब हम लोगों के लिए मतलब किस प्रकार कानूनी सहायता में मिल सकती है, मतलब क्या क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कानूनी सहायता में?
1: कानूनी सहायता में किस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है?
0: देखिए, देश में कानूनी सहायता, मैं फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। अब उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस राइट को सबको अवेलेबल कराने के लिए सरकारों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई तरीके की व्यवस्था की गई है। जब आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने राइट्स को, इन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, तो हर जो भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है वहाँ पर अगर आप जाकर बात करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई देश का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अदर तरीके से जो डाउनट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उसको बिलोंग करता है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एड काउंसिल्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है और बहुत सारे प्रोविजंस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन वहां पर जो लोग जो कैपेबल हैं, उन कैपेबल लोगों के लिए शायद उतनी आवश्यकता नहीं है स्टेट की तरफ से मदद के लिए, इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है। जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, जो डाउनट्रोडन सेक्शन है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, और अब पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इवन तो चूंकि समय के साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है देश में कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए भी लीगल एड के अब प्रोविजंस हो रहे हैं। तो निसंदेह अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, तो आप जो कंसर्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, अगर आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है वहां जाइए, या अगर हाई कोर्ट में है वहां जाइए। आपको कोई, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं और आपको एक सक्षम वकील

0: कोर्ट की तरफ से मार्क किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और न्याय वैसे भी एक सामाजिक अवधारणा है, और मुझे लगता है कि जब न्याय मिल जाता है किसी को भी तो जनता जो होती है वो अपने आप ही खुश हो जाती है। आशीष जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से संजय जी का। जी संजय जी।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
2: संजय दिल्ली से। मैम मेरा सवाल ये है, ये इतने अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो जो कम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे मामले लोग अदालतों को दे दे रहे हैं। मेरा मानना है पुलिस वालों को अगर शक्ति दिखाई दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई ऐसे बड़े बड़े फैसले दे करके सरकारों के नियम जो आप तरीके बदल देते हैं, तो क्यों ना पुलिस वालों के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोग, क्योंकि ज्यादातर
1: जी बीच में ही हमारी कॉल कटी,
0: लेकिन जो उनकी मंशा थी पूछने की कि क्या पुलिस वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: अब इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कई सारी अपनी जो लीगल अथॉरिटी है उसको वायलेट करते हुए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आते हैं, और ये आज की सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा विजिबल भी होते हैं। लेकिन एक ऑल इन कंपासिंग या ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा कि पुलिस वालों पर सख्ती दिखाई जानी चाहिए, तो देखिए पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। और विश्वास मानिए, आप जिन पुलिस वालों पर सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके से थाने को खत्म कर दिया गया है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं,
1: तो मुश्किल है।
0: आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। हर चीज के दो पहलू है, जहां पर कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, वो फिर किसी के द्वारा हो, प्राइवेट सिटीजन के द्वारा हो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, वहां पर कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिसर, हर पुलिस वाला भी एक ड्यूटी निभा रहा है। जी
1: जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर जी। जी रमाशंकर जी।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं ये पूछना चाहता था कि डिजिटल साइबर क्राइम, सेक्सुअल क्राइम और रोड एक्सीडेंट के लिए भी लोग अदालतें सक्षम हैं?
0: जी देखिए, तीन तरीके के आपने मुकदमों की बात करी। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर इस कंपाउंड नहीं किया जा सकता है या आपसी सुलह समझौता नहीं हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए साइबर अपराधों की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए अगर आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ चीटिंग करी गई है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया गया है, और ऐसा प्रोविजन है कि आप जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया है उसके साथ बैठकर मामले को सुलह समझौते से खत्म करना चाहते हैं, वो आपको आपके पैसे लूटे हुए वापस कर देना चाहता है और आप नहीं चाहते कि आगे चीजों को परसू किया जाए, ऐसे कुछ विशेष मामलों में, साइबर अपराधों में भी लोक अदालत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज, आपने मोटर एक्सीडेंट की बात करी। मोटर एक्सीडेंट भी देखिए दो तरीके से केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और किसी ने इंटेंशनली उसको एक्सीडेंट कर दिया या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कर दिया, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट केस हो सकता है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप पाएंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, जो एक्यूज पर्सन होता है उससे कॉम्पनसेशन की बात हो सकती है। तो ऐसे मामले विशेष रूप से लोक अदालतों में जाते हैं और बहुत ही इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा हुआ है। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको एक अच्छे अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामले को लोक अदालत में लेकर जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा काउंसिल भी अपने साथ रखना चाहिए, जो कि आपको बता सके कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। कई बार कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की जो नेगोशिएशन की पावर होती है वो एक विक्टिम की नेगोशिएशन पावर से बहुत ज्यादा होती है। लोक अदालत में जो भी आपके अवार्ड आते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप वहां पर अपने लिए निर्णय लें, जो भी सुलह समझौता करें, वो एक इन्फॉर्म्ड सुलह समझौता होना चाहिए, वो एक इग्नोरेंट स्टेज में लिया गया सुलह समझौता नहीं हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने एक तीसरे क्लेम की बात करी, इफ यू कैन रिकॉल इट, आपने एक और क्राइम की बात करी थी।
1: लेकिन हमारे पास समय कम है, हम अगले जो है प्रोग्राम में जरूर इसको शामिल करेंगे, लेकिन अंत में चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि एक नागरिक के रूप में हम कैसे लोक अदालत को सफल बना सकते हैं।
0: देखिए

0: लोग आज की देश आपकी जो आज सिनारियो है ये इस तरीके का हो गया है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। पहले देश में एक ऐसा सामाजिक इन्वायरमेंट था कि बहुत सारे जो झगड़े थे वो आपस में परिवार और समाज मिलकर ही सुलह कराकर समाप्त कर देता था। लेकिन एक उसका पहलू ये भी था कि बहुत ऐसी सारी जो घटनाएं जो कि रिपोर्ट होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आगे रिपोर्ट नहीं हो पाती थी। अब आज की डेट में आपके सवाल को आंसर करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र ये है कि वो ऐसे सारे डिस्प्यूट जिसमें कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, और ऐसा अपराध जहां पर आप आपस में बैठकर चीजों को बात करके शायद एक बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसे समझौते की तरफ पहुंच सकते हैं जो कि दोनों पार्टी को मंजूर हो, जिस तरीके से पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी होते हैं, उन चीजों को देखते हुए आप इन मामलों को लोक अदालत में लेकर जाए और खुले मन से जाए, खुली सलाह के साथ जाए और आपको वहां सफलता मिलेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसके साथ ही फरहत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार चित्रा सिंह के स्वर में।

फनकार चित्रासी के स्वर में ये गज़ल आपने सुनी। कार्यक्रम के आखिर में अब आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार जगजीत सिंह के स्वर में गाई हुई ये गज़ल।

फनकार जगजीत सिंह के स्वर में गाई हुई इस गज़ल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ही गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म कभी कभी से। आवाज़ गायक कलाकार मुकेश की, बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने, धुन है खय्याम की।

फिल्म कभी कभी के इस गीत के बाद श्रोताओं सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में फिल्म लव स्टोरी से।

गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म लव स्टोरी से। कार्यक्रम का अगला नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन है शिव हरी की।

फिल्म कटी पतंग के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा। गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म कस्मे वादे से।

फिल्म कस्मे वादे का ये गीत आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। कार्यक्रम के आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म यादों की बारात से।

श्रोताओं, गायक कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में गाए हुए फिल्म यादों की बारात के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में

होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में होंगे उपस्थित। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।